उस वक्त जकरिया ने अपने परवरदिगार से दुआ की और कहा कि परवरदिगार मुझे अपनी जनाब से औलाद सालेह अता फरमा, तू बेशक दुआ सुनने और कबूल करने वाला है।

देखो ऐसी बात में तो तुमने झगड़ा किया ही था जिसका तुम्हें कुछ इल्म था भी, मगर ऐसी बात में क्यों झगड़ते हो जिसका तुमको कुछ भी इल्म नहीं, और खुदा जानता है और तुम नहीं जानते।

और अहले किताब एक दूसरे से कहते हैं कि जो किताब मोमिनों पर नाजिल हुई है उस पर दिन के शुरू में तो ईमान ले आया करो और उसके आखिर में इनकार कर दिया करो ताकि वो इस्लाम से बरगश्ता हो जाए।

तनीम ले गए। जब सूली पर चढ़ाना चाहा तो उन्होंने फरमाया, मुझे छोड़ दो, जरा दो रकत नमाज पढ़ लूं। मुशरिकीन ने छोड़ दिया और आपने दो रकत नमाज पढ़ी। जब सलाम फेर चुके तो फरमाया, बाखुदा अगर तुम लोग ये ना कहते कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ घबराहट की वजह से कर रहा हूँ तो मैं कुछ और तोल देता। उसके बाद फरमाया, ए अल्लाह इन्हें एक एक करके गिन ले, फिर उन्हें बखेर कर मारना और उनमें से किसी एक को बाकी ना छोड़ना। फिर ये अशार कहे, लोग मेरे गिर्द गिर्द जमा हो गए हैं, अपने कबाइल को चढ़ा लाए हैं और सारा मजमा कर लिया है, अपने बेटों और औरतों को भी करीब ले आए हैं और मुझे एक लंबे मजबूत तने के करीब कर दिया गया है। मैं अपनी बेवतनी और बेकसी का शिकवा और अपनी कतलगाह के पास ग्रोहों की जमा करदा आफत की फरियाद अल्लाह ही से कर रहा हूँ। ए अर्श वाले, मेरे खिलाफ दुश्मनों के जो इरादे हैं उस पर मुझे सब्र दे। उन्होंने मुझे बोटी बोटी कर दिया है और मेरी खुराक बुरी हो गई है। उन्होंने मुझे कुफर का इख्तियार दिया है, हालांकि मौत उससे कमतर और आसान है। मेरी आंखें आंसुओं के बगैर उमंड आई हैं। मुसलमान मारा जाऊं तो मुझे परवाह नहीं कि अल्लाह की राह में किस पहलू पर कत्ल होगा। ये तो अल्लाह की जात के लिए है और वो चाहे तो बोटी बोटी किए हुए आजा को जोड़कर बरकत दे। उसके बाद अबू सुफियान ने हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, क्या तुम्हें ये बात पसंद आएगी कि तुम्हारे बदले मोहम्मद हमारे पास होते, हम उनकी गर्दन मारते और तुम अपने अहलो अयाल में रहते। उन्होंने कहा, नहीं वल्लाह मुझे तो ये भी गवारा नहीं कि मैं अपने अहलो अयाल में रहूं और उसके बदले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां आप हैं मैं वहां रहते हुए कांटा चुभ जाए और वो आपको तकलीफ दे। उसके बाद मुशरिकीन ने उन्हें सूली पर लटका दिया और उनकी लाश की निगरानी के लिए आदमी मुकर्रर कर दिए। लेकिन हजरत अमरू बिन उमैया जुमरी रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए और रात में झांसा देकर लाश उठा ले गए और उसे दफन कर दिया। हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु का कातिल उकबा बिन हारिस था। हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके बाप हारिस को जंगे बदर में कत्ल किया था। सही बुखारी में मरवी है कि हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु पहले बुजुर्ग हैं जिन्होंने कत्ल के मौके पर दो रकत नमाज पढ़ने का तरीका मशरू किया। उन्हें कैद में देखा गया कि वो अंगूर के गुच्छे खा रहे थे, हालांकि उन दिनों मक्का में खजूर भी नहीं मिलती थी। दूसरे सहाबी जो इस वाकये में गिरफ्तार हुए थे यानी हजरत जैद बिन दुश्ना रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्हें सुफवान बिन उमैया ने खरीद कर अपने बाप के बदले कत्ल कर दिया। कुरैश ने इस मकसद के लिए भी आदमी भेजे कि हजरत आसिम रजी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म का कोई टुकड़ा लाएं जिससे उन्हें पहचाना जा सके, क्योंकि उन्होंने जंगे बदर में कुरैश के किसी अजीम आदमी का कत्ल किया था। लेकिन अल्लाह ने उन पर भीड़ों का झुंड भेज दिया जिसने कुरैश के आदमियों से उनकी लाश की हिफाजत की और ये लोग उनका कोई हिस्सा हासिल करने पर कुदरत ना पा सके। दर हकीकत हजरत आसिम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह से अहदो पैमान कर रखा था कि उन्हें कोई मुशरिक नहीं छुएगा। दर हकीकत हजरत आसिम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह से अहदो पैमान कर रखा था कि ना उन्हें कोई मुशरिक छुएगा ना वो किसी मुशरिक को छुएंगे। बाद में जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को इस वाकये की खबर हुई तो फरमाया करते थे कि अल्लाह मोमिन बंदे की हिफाजत उसकी वफात के बाद भी करता है जैसे उसकी जिंदगी में करता है। सामईन यहाँ पर एक वक्फा और वक्फे से वापस आकर हम अपने इसी सिलसिले को मजीद आगे लेकर बढ़ेंगे।

0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6। रूह की ताजगी का सफर तय कीजिए यूसीपी की दुनिया के साथ। तो सुनते रहिए
1: سيد الأولين والآخرين
0: FM 92.6।
2: In the name of God, the supremely merciful, the most kind.

www.musicbeat.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke duniya.

0: लाहौर्स नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं, चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

www.musicbeat.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی
3: ایک نیا انداز
4: ایک نئی سوچ
3: ایک نئی پہچان
4: ایک نئی لگن
3: یو سی پی میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان
4: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے
3: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی معلومات کی اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی
4: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں یو سی پی نمبر ون
3: جب ملتی ہے لگن
4: محنت
3: کامیابی اور خلوص
4: تو بنتی ہے
3: یو سی پی کی دنیا
4: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6
3: سنتے رہیے
5: السلام علیکم دس از آمنہ نعیم لیکچرر فرام دا فیکلٹی آف لینگویجز اینڈ لٹریچر یو سی پی آج اگین میں نے ایک اور بک سلیکٹ کی ہے دیٹ از آئس کینڈی مین بائی بیپسدوا اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس دس بک ود مائی فرینڈ اینڈ کولیگ مس عائشہ خان ہو از آلسو لیکچرر یو نو ان دی فیکلٹی آف لینگویجز اینڈ لٹریچر دا ریزن بہائنڈ یو نو سلیکٹنگ دس پرٹیکولر ورک اینڈ ناول از دیٹ It's a story about the 1947 partition of the subcontinent and how the narrative that is there and the situations that are there that have been narrated by Babsidwa they're still kind of relevant in the contemporary situation of Pakistan kyunki wahi jo hamare religious differences badh gaye the back in that time you know 1947 mein aur jiski wajah se phir you know hindu muslim fasadat hue you know these communities killed each other they went against each other wahi cheeze kahin na kahin aggravate kar چکی ہیں آج کی سچویشن میں ہی بھی اور وہ کہیں وہ نیشنلٹیز یا نیشنز سے نکل کے قومیت سے نکل کے وہ بہت حد تک پرمیٹ کر گیا ہے آپ کے ایتھنک فیبرک پہ بھی آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں اپنے اراؤنڈ یہاں پہ اور بھی بہت ساری انسیڈنٹس ہو رہے ہیں رائٹس ہو رہے ہیں اسی طرح سے اور بھی ہم بہت جگہ پہ فیس کر رہے ہیں اس طرح کے ایشوز سو دس ورک از ویری یو نو ریلیونٹ ان ٹو ڈیز ٹائمز ایز ویل And before again delving deep into the discussion on this book, I would like Ms. Aisha to take the initiative to talk about the importance of again this book and also on the importance of the very title of this book. So yes, over to you, Ms. Aisha.
6: Thank you so much, Ms. Amna Naeem. Hello, everybody. So why there is a shift in the academia towards partition literature in today's time, this is an important thing. Agar hum apne ird gird dekhein, aaj duniya mein kya ho raha hai, what is happening in Palestine, what is happening in Gaza, people are going through the same trauma, separation, the sort of chaos that we have in the world today, chahe wo Syria ho, wo Congo ho, jahan par bhi aap dekhein, ethnic rights hain, conflict hain, separation hain, anxiety hain, trauma hain, the displacement that the people are going through, the feeling of uprooting leaving back your homes جہاں سے آپ کی آئیڈینٹی نکلتی ہے تو وہ ساری چیزیں آج بھی دنیا میں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اینڈ دا فیکٹ دیٹ وی ہیو کم سو فار فرام پارٹیشن ناؤ ان ٹو ڈیز ورلڈ لیکن اگر ہم اپنے ایشوز کو دیکھیں اینالائز کریں تو ہمیں پتہ چلے گا دیٹ دا ایشوز آر دا سیم وی ہیو ناٹ کم آؤٹ آف دیٹ ریلیجیس ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ وہ سیکٹیرینزم ساری چیزیں ابھی بھی ویسی کی ویسی ہیں سو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو ٹاک talk about the basic issues because until and unless we talk about them we realize ke masla actually mein kidhar hai
5: to usko resolve nahi kar read these books so you know again ye jo hum aaj book talk kar rahe hain this is also an initiative of the reading circle of faculty of languages and literature تو ہم آج پھر अगेन इस किताब के थ्रू भी यही बात करेंगे, हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अगेन गेट बैक टू लिटरेचर, रीडिंग योर बुक्स, अपने आसपास एक्सप्लोर करें, आपके आसपास ये यू नो लाहौर जैसे शहर में इतने सारे राइटर्स प्रोड्यूस हुए जिन्होंने इन सब इशूज़ की बात की, क्योंकि जब फिर हम उनकी वर्क्स पढ़ते हैं, उनके अल्फाज पढ़ते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो सेंसिबिलिटीज़ और वो जो क्रिटिकल लेंस है वो डिवेलप होता है, एंड बाय डिवेलपिंग दैट दोज सेंसिबिलिटीज़ वी कैन एक्चुअली स्ट्राइव एट लीस्ट towards making a better future for our own country, for our nation.
6: Because this is the purpose of history. If we have not learned from our history, we are not going to make our future better. So through these books, हम sensitivity अपने अंदर develop कर सकते हैं, sensibility develop कर सकते हैं, ताकि हम देख सकेंगे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम एक loop में चलती आ रही हैं, and we are doing the same thing over and over again, and we cannot expect some change if we are repeating the same mistakes again.
5: और वो जो violence के जो cycles हैं, वो चलते आए, और हमने वही देखने कि वो शुरू कहाँ से होते. This book actually helps us, learn about के वो जो आग थी, वो ignite कहाँ से हुई. ठीक है, कि यहाँ पे जो कम्युनिटीज़, अगर हम अपनी खुद हिस्ट्री देखें, संस्कृति हिस्ट्री या इंडस सिविलाइजेशन है, तो उसमें हम देखते हैं कि यू नो द कम्युनिटीज़ वर लिविंग टुगेदर इन हार्मनी विद ईच अदर. ठीक है, दैट वाज द सिचुएशन बिफोर द अराइवल ऑफ दीज ब्रिटिश पीपल. ठीक है, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं फ्रिक्शंस तो होती हैं, बहुत सारे डिफरेंट राजा महाराजा थे और उनकी अपनी छोटी छोटी बादशाहतें थी, और उनके आपस में वो कहीं ना कहीं वो लैंड के लिए और पावर के लिए लड़ाइयाँ तो रहती थी, बट फिर भी देयर वॉज दिस हारमनी बिटवीन द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियस अफिलिएशंस. में हम अगर थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन ज़्यादा हिस्ट्री को डिग इन करें, तो ब्राह्मिन्स में भी इस तरह की सिचुएशंस रही हैं कि वो इमाम हुसैन और इमाम अली को फॉलो करते हैं. आज भी उनके कुछ इस तरह के रिचुअल्स हैं जो मुहर्रम के दिनों में वो फॉलो करते हैं. हम भी उनकी होली और दिवाली को रिस्पेक्ट करते थे, इसी तरह से वो भी हमारी ईद वगैरह में कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के इवेंट्स को रिस्पेक्ट करते थे, हम उनको मिल के मनाते थे. एटलीस्ट इस तरह की लड़ाइयाँ नहीं थी, लेकिन ये शुरू तभी हुई जब ये सारा 1947 का में सिचुएशन शुरू हुई, एंड व्हेन एक्चुअली दिस ब्रिटिश पीपल एक्चुअली ट्राइड टू रिड्यूस पीपल इंटू रिलीजियस सिम्बल्स, इंटू देयर रिलीजियस आइडेंटिटीज, और फिर वहाँ पर हम एक दूसरे से कितने ज़्यादा दूर होते गए, और वही चीज़ें आज मज़ीद एग्रेवेट होती जा रही हैं कि within even the Islamic tradition है, जो मुस्लिम कम्युनिटी, हमारे पास बहुत सारे जो है ना सेक्शंस बन गए हैं, और उनमें शदीद किस्म की फ्रिक्शन आ गई है, जो कि अब बहुत हद तक ब्लडशेड की तरफ भी जाती जा रही है.
6: आई गेस द ब्यूटी ऑफ द नॉवल लाइज इन द फैक्ट दैट बापू सिद्धा इज गिविंग अस डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट टाइम फ्रेम्स एज वेल. इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द डिफरेंसेस, वी शुड लुक एट द फैक्ट दैट व्हाट वर द थिंग्स दैट मेड अस लिव इन दैट हारमोनियस और वेरी पीसफुल एटमोसफियर वेयर देयर वर हिंदू, सिख्स, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स एंड इवन पारसीज एज well, they knew that they belonged to different religions, but they were living in complete harmony. They were respectful of each other's religious identities. So don't you think it's a very bleak thing that humans have been reduced to this like a small dot of religious identities and religious symbols? Where is the humanity?
5: Yeah. That is the questions that kind of arise in one's mind when you read these texts or this novel. हम थोड़ा सा अगेन जाएंगे अगेन टाइटल की सिग्निफिकेंस पे, कि वो आइस कैंडी मैन क्यों है इसका टाइटल, उसकी अपनी सिग्निफिकेंस क्या है. तो अगर हम उसके बारे में बात करें, तो वो यही है कि इट्स बेसिकली द आइस कैंडी मैन इज़ द वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स इन द नॉवल, एंड उसकी जो पर्सनालिटी है वो प्री पार्टीशन, ड्यूरिंग पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन कैसे चेंज होती है. ही इज़ कॉल्ड आइस कैंडी मैन बिकॉज ही सेल्स दीज पॉप्सिकल्स, आइस पॉप्सिकल्स टू लिटिल किड्स इन अ पार्क. ही इज़ अ मुस्लिम यंग मैन. द टाइटल इज ऑल्सो सजेस्टिव कि वो कैसे आइस कैंडी मैन पहले पार्टीशन में कैसे एक सॉलिड फॉर्म में होता है, आइस की फॉर्म में होता है, आइस इन दिस नॉट इन द टर्म्स ऑफ कोल्डनेस बट ऑल्सो इन द टर्म्स ऑफ दैट वो स्ट्रांग होता है. ही इज अ स्ट्रांग फ्रेंड ऑफ डिफरेंट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियस आइडेंटिटीज. वो एक हिंदू आया है, उसके साथ भी उसकी एक कहीं ना कहीं पसंद की पसंदीदगी है. इसके अलावा और भी बहुत यू नो बीच में कुछ हिंदू भी हैं, सिख्स भी हैं, पारसी एक बच्ची है जो कि नरेटर है स्टोरी की, उसका भी वो दोस्त है, उसको वो फ्री पॉप्सिकल्स देता है. तो वो यू नो एक अच्छा दोस्त है, एक स्ट्रॉन्ग दोस्त है. तो उसकी एज अ पर्सन, एज अ फ्रेंड, वो उसकी स्ट्रेंथ को भी यू नो रिफ्लेक्ट करता है. बट वेन वी सी के जो ऐसी जैसी नरेटिव यू नो जाता है पार्टीशन की तरफ, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो हीट ऑफ दैट पार्टीशन, वो जो हीट ऑफ पोलिटिकल chaos that started to happen, वो उस हीट की वजह से कैसे फिर melt हो जाता है, liquid form में हो जाता है, liquidify हो जाता है, और फिर उस liquid में आते आते कैसे वो you know फिर वो इतना ज़्यादा लिक्विडिफाई हो जाता है कि वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है, और वो फिर उस हीट से कितने लोगों को नुकसान पहुंचाता है, कितने वो मॉब्स को लीड करता है, और उन मॉब्स के थ्रू वो कितनी यू नो हिंदूज़ को, हिंदू कम्युनिटीज़ को, सिख कम्युनिटीज़ को नुकसान पहुंचाता है. और फिर ग्रेजुअली बाय द एंड ऑफ द नावल, व्हेन वी आर इन द स्टेज ऑफ पोस्ट पार्टीशन ईयर्स, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि उसका वो कैसे ग्रेजुअली यू नो अपनी वो, बिकॉज ही गेट्स कंज्यूम्ड बाय हिज रिलीजियस आइडेंटिटी एंड दैट
6: द मैडनेस,
5: द मैडनेस, द हेट्रेड दैट गॉट इग्नाइटेड ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ पार्टीशन, वो कैसे एग्रीवेट होती जाती है, और वो उसी से कंज्यूम होते होते कैसे इवेंचुअली इवेपोरेट हो जाते हैं.
6: एंड आई गेस दिस इज द सेम थिंग दैट लॉट ऑफ राइटर्स हु रोट अबाउट एंड ड्यूरिंग पार्टीशन, लाइक मंटो और कृष्ण चंद्र, दे हैव टॉक्ड अबाउट this fact that whatever was happening during partition in the name of religion was not religious at all. It wasn't something that the religions used to preach and still preach. It was something that the people wanted to do. It was pure satanism.
5: वो जो एक इंसान के अंदर एक मैडनेस होती है, क्रेज होता है, इनसैनिटी, वाइल्ड साइड जो होती है ना, वो कैसे निकल के आती है. दे यूज हाउ दे यूज दीज पोलिटिकल नैरेटिव, बट अगैन वो कहीं ना कहीं उनमें पनाह लेने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअली वो खुद अपने आप में जो है ना वो बहुत ज्यादा वाइल्ड होते हैं. वो उनकी वाइल्ड साइड कैसे निकल के आती है वो हमें पता चलता है, और कैसे निकल के आई सब कम्युनिटी.
6: वी हैव बीन लिसनिंग टू द फैक्ट दैट नथिंग इज ए पोलिटिकल. So these writings actually show us what happens when you politicize religion. आप रिलीजन को पोलिटिसाइज कर देते हैं, एंड व्हेन पॉलिटिक्स एंटर योर माइंड एंड योर आइडियोलॉजी इज पोलिटिसाइज्ड, आपके डोमेस्टिक स्फेयर में वो एंटर हो जाती है, आपकी सारी बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाती है. सो इफ दिस इज द ओनली लेंस थ्रू विच यू आर लुकिंग एट द थिंग्स, देन दिस इज द एंड यू आर गोइंग टू मीट, द एंड ऑफ आइस कैंडी मैन एंड द एंड ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, बी देम हिंदू, सिक्स, एसाईज और मुस्लिम्स, ऑल सफर्ड. Each and everybody suffered.
5: और वो जो उनकी दोस्तियां थी वो कैसे कितनी यू नो शदीद किस्म की दुश्मनी में बदल जाती हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे. इसके अलावा और भी बहुत सारी राइटिंग्स हैं, हमने मंटो अगर हम पढ़े तो उसमें बहुत सारी ये इसी किस्म की कहानियां हैं. तो वी ऑल्सो काइंड ऑफ सी दैट मंटोएस्क टेस्ट एंड अप्रोच इन द नैरेटिव स्टाइल ऑफ वापसी सिद्धवा इन दिस नॉवल. तो शी वॉज एक्चुअली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यू नो मंटोज राइटिंग्स. और साथ ही हम और भी कुछ राइटर्स की बात करें तो उनकी भी उसमें हमें यू नो एक फ्लेवर मिलता है. इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारी मूवीज़ आई हैं. ये खुद नॉवल जो है इस पर भी एक मूवी बनाई गई. आमिर खान इज़ आई थिंक प्लेइंग द रोल ऑफ आइस कैंडी मैन, एंड द नेम ऑफ दैट मूवी इज़ अर्थ 1947. और एक और क्रैकिंग इंडिया भी इसका एक दूसरा टाइटल है. So anyways, again, now we will, without wasting, you know, any more time, we will get into the, you know, reading the novel. ये जो पूरा novel है, it consists of 32 chapters. और बिल्कुल जो शुरू के 8 से 10 chapters हैं, उसमें हम देखते हैं before partition situation क्या थी सब कॉन्टिनेंट की, स्पेसिफिकली लाहौर में सिचुएशन क्या थी, क्योंकि पूरा जो नावल है वो लाहौर में सिचुएटेड है. वारिस रोड और क्वींस रोड, जेल रोड, दिल्ली गेट, मोची गेट, शालमी, ये लोकेलिटीज हमें नजर आती हैं, इनका बहुत ज्यादा जिक्र नजर आता है.
6: वन ऑफ द ब्यूटीज ऑफ दिस नावल इज दैट फॉर एनी आउटसाइडर, फॉर एनी फॉरेनर, इफ दे विल रीड द नावल, दे विल गेट टू नो लाहौर.
5: दे कैन सी
6: लाहौर थ्रू द आईज ऑफ बापसी सिद्धवा.
5: यस, थ्रू द आईज ऑफ दिस novel they could see and you know imagine the streets of Lahore, the society of Lahore. So agar aapko padhne ka bahut shauk hai Lahore ke bare mein bhi, so this book actually is a very good one for that matter. अच्छा शुरू हम करेंगे अगर हम देखें तो narrator कौन है कहानी का, वो है हमारे पास एक पारसी बच्ची है जो कि narrate कर रही है, जो कि कहानी किस्सा बयान कर रही है जो उसके आंखों के सामने हुआ. So ये जो लेनी है she is a young girl, 7-8 साल की एक बच्ची है और वो जो है ना वो एक पारसी घर में रहती है और उनके घर में बहुत सारे मुलाजिम है जो different different religious identities से belong करते हैं. यानी कि उसकी जो बच्ची की अपनी जो एक बेबी सीटर है ये नैनी है, उसका नाम आया है, वो एक हिंदू लड़की है 16-17 साल की. इसके अलावा उसके घर में एक इमाम दीन कुक काम करता है जो कि एक यू नो एल्डरली एज का एक मुस्लिम आदमी है. इसके अलावा अब अपनी बेबी सीटर के साथ होता क्या है कि लैनी जो है वो रोज़ी एक पार्क में जाती होती है, ठीक है, और उस पार्क का नाम भी क्वीन विक्टोरिया पार्क है. वहाँ पे उस पार्क के अंदर एक्चुअली देयर इज़ दिस स्टैचू ऑफ क्वीन विक्टोरिया एज वेल विच एक्चुअली इज सिम्बॉलिक ऑफ द ब्रिटिश राज इन द प्री पार्टीशन ईयर्स, कि कैसे लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी ब्रिटिश राज के यू नो साए में गुजार रहे थे और फिर लेकिन उनकी आपस में एफिलिएशंस बहुत अच्छी थी एंड दे ऑल वर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. तो वो सेंटीमेंट्स वो सिचुएशन वो हमें उनकी कॉन्वर्सेशंस में नज़र आती है, लेकिन वो आपस में हिंदू मुस्लिम सिख Christians, वो सब आपस में जो है ना वो बड़े मिल के रहते थे.
6: As if they had only one enemy at that point.
5: Yes. That was actually the scene. तो वो चीज नजर आती है. There is another very beautiful thing. अगर हम इसको थोड़ा सा पोस्ट कॉलोनियल लेंस से देखें तो जो बैप्सी सिद्वा है शी इज ऑल्सो काइंड ऑफ हमें बता रही है कि हमारे इंडिजिनस ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो है खवातीन को लेके वो कितने डिफरेंट हैं वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स से. तो वो उनको बल्कि सेलिब्रेट करती है रादर देन लुकिंग डाउन अपॉन देम. सो दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स कि वो अपने इंडिजिनस कल्चर को ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को और जो यू नो प्री वॉयलेंस सिचुएशन थी उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं. तो इस तरह की हमें चीज़ें हमें शुरू के चैप्टर्स में मिलती हैं और अगेन ओवरऑल अगर हम देखें तो इस चैप्टर में इन चैप्टर्स में बात हो रही है अगेन उनकी हारमोनी की, हारमोनी बिटवीन पीपल बिलोंगिंग टू रिलीजियस सिचुएशन एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी गेट टू सी और रीड इन दिस नॉवल इज द अप्रोच एंड द परस्पेक्टिव ऑफ पारसी कम्युनिटी टूवर्ड्स दिस इंसिडेंट ऑफ 1947 पार्टीशन. क्योंकि ये पोलिटिकल सिचुएशन में तो ये बातें चल ही रही थी, ये डिबेट्स हो ही रही थी कि जी नेहरू और जिन्ना के आपस में डिफरेंसेस चल रहे हैं और फिर हिंदूज क्या कर रहे हैं मुस्लिम्स के अगेंस्ट और मुस्लिम्स क्या चाहते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. तो ये वाली सारी सिचुएशन हमें नजर आती है.
6: अच्छा जब भी हमने हिस्ट्री को देखा है तो 1947 पार्टीशन की जब भी बात हुई है मोस्टली सारा जो फोकस है वो हिंदूज और मुस्लिम पर ही रहा है. सो व्हाट डू यू थिंक इज द सिग्निफिकेंस दैट बापसी सिद्वा चोज अ पारसी गर्ल टू बी अ नैरेटर.
5: उसमें वही बात है कि वो अपना भी बिकॉज बापसी सिद्वा हरसेल्फ वाज अ पारसी तो वो अपना एक नैरेटिव भी बयान कर रही है, बयान करने की कोशिश कर रही है कि हम लोगों ने हमारे लोगों ने इस सिचुएशन को कैसे देखी एंड शी ऑल्सो इज ट्राइंग टू वोकलाइज हर पर्सपेक्टिव कि हम इस साइज सिचुएशन में कहाँ थे और फिर हमने क्या किया और क्या हम कर सकते थे और क्या हमने नहीं किया. बिकॉज
6: सो इज इट लाइक अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव हु इज वॉचिंग एवरीथिंग ऑब्जेक्टिवली एंड
5: ट्राइंग टू गिव अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव ऑन द थिंग्स कि हाउ द अदर पीपल वर इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दैट सिचुएशन और उनमें उनके अपने अपने स्टेक्स क्या थे और उनके फिर वॉयलेंट एक्ट्स क्या थे. बिफोर आई डूइंग मोर डिस्कशन ऑन दैट वी हैव टू गो फॉर अ म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फिर हम दोबारा शुरू करते हैं.
6: स्टे ट्यून्ड.

0: Broadcasting from University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: We are back again with our discussion on the book Ice Candy Man by Bapsi Sidhwa. ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पारसी पर्सपेक्टिव की, कि कैसे जो स्टोरी है वो हमें एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देती है, एक पारसी कम्युनिटी का पर्सपेक्टिव हमें मिलता है अपॉन द सिचुएशन, क्योंकि मेजरली वो स्टेक होल्डर्स नहीं थे इस सारी सिचुएशन में. तो उनका पर्सपेक्टिव और वो जिस अप्रोच उन्होंने यूज़ की एम्प्लॉय की उस टाइम पे उस सिचुएशन में, तो वो क्या थी, उसमें हमें कुछ ना कुछ रेफरेंसेस भी किताब से मिलते हैं. सो देयर इज दिस कर्नल पर्सन, कर्नल ब्रूचा, ही इज अ नाइस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस पारसी कम्युनिटी. उनका आपस में एक डिस्कशन चल रहा है उनकी अपनी कम्युनिटी में कि व्हाट आर दे गोइंग टू डू इन दिस सिचुएशन. तो उसमें फिर इवेंचुअली उनकी आपस में थोड़ी सी बहस मुबहसा चलता है, बट यहाँ पे हमें आके फाइनल उनका जो एक मिलता है कि वो उनका स्टांस क्या होगा, वो यही होता है दैट ही सेज के जो भी इस जगह पे जहाँ पे हम रहते हैं लाहौर में, जो भी इस लैंड को रूल करना चाहता है जस्ट बी इट, और हम किसी भी किस्म की रेजिस्टेंस शो नहीं करेंगे, ना ही हम किसी किस्म की कोई साइड लेंगे. आई वुड लाइक टू कोट फ्रॉम द बुक, वहाँ पे दैट पर्सन कर्नल बरूचा सेज, वी व्हेन ही काइंड ऑफ रिवाइव्स और रिकॉल्स हिज हिस्ट्री इन फ्रंट ऑफ हिज पीपल, दैट व्हेन वी वर किक्ड आउट ऑफ पर्शिया बाय द अरब्स 13 इयर्स अगो, व्हाट डिड वी डू, डिड वी शाउट और आर्ग्यू, नो, roars the colonel and hastily provides his own answer before anyone can interrupt. We got into boats and sailed to India. Furthermore, bhi aage hum agar isme dekhen to page number 39 pe he says that let whoever wishes rule, Hindu, Muslim, Sikh, Christian, we will abide by the rules of their land. And he further says, as long as we do not interfere, we have nothing to fear. As long as we respect the customs of our rulers, as we always have, we will be all right. So again, he gives a very reasonable and a very practical approach ki hame kya approach join karni chahiye, aur wahi cheez unhone practice bhi ki during partition, ki unhone kisi ki side nahi li, rather they were neutral and they were friendly with religious affiliation,
4: because I think because they were in minority, they knew that they were out of the race.
3: True.
4: वो तो नहीं आ सकते, और जैसे उसने कहा कि अगर हम इंटरफेयर करेंगे तो फिर फ्रिक्शन होगी
3: और फिर वो विल हैव टू फियर समथिंग, वी विल बी वाइप्ड आउट. ही आल्सो सेज दैट कि अगर हम किसी भी किस्म की कोई वो करते हैं तो हम उसमें ऐसे ही रगड़े जाएंगे, और इवेंचुअली उनका कोई स्टेक होल्डर है ही नहीं, क्योंकि उनको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों का पता है कि उनकी एज सच वो स्ट्रेंथ में तो है ही नहीं, ना ही वो एक मेजोरिटी में है, तो उनको इस रेस में पड़ना ही नहीं चाहिए. सो दे वर यू नो प्लेइंग वेरी सेफली. And that was, I think, also the very, very, very practical approach. तो फिर हम चैप्टर्स में देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता से चीज़ें, पहले कैसे वो सारे जो वो फ्रेंड्स हैं या वो जो वर्कर्स हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं डिफरेंट घरों के, डिफरेंट रिलीजियस आइडेंटिटीज़ के, वो कैसे वो पार्क में इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं एक दूसरे के साथ, उनके इवन के अफेयर्स भी हैं, यू नो, हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में भी. सो थिंग्स आर वेरी ईजी बिटवीन ऑल ऑफ दीज.
4: आई गेस द फैक्ट दैट दे वर नॉट मेड कॉन्शियस और अवेयर ऑफ देयर रिलीजियस आइडेंटिटी एट दैट पॉइंट इन टाइम, दे वर लुकिंग एट ईच अदर लाइक ह्यूमंस,
3: एग्जैक्टली,
4: लाइक ऑर्डिनरी पीपल.
3: क्योंकि अभी तक वो जो पोलिटिकल स्पेक्ट्रम में बातें चल रही थी, जो लीडर्स की बातें हो रही थी, दरमियान में स्पीचेस हो रही हैं, वो बहुत हद तक बस उसी स्पेक्ट्रम में थी. एज सच वो लोगों की ग्रास रूट लेवल पे वो नैरेटिव्स उस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे थे, ना ही पहुंच रहे थे.
4: सो व्हेन पॉलिटिक्स इंटरसेक्टेड विद द पर्सनल लाइफ, देयर आइडियोलॉजी, तो वो सारी चीजें ही चेंज होती,
3: आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती हैं. उनकी वही बात है कि वो जो देन द प्राइवेट डिड नॉट रिमेन प्राइवेट एनी लॉन्गर, इट बिकेम अ पॉलिटिकल थिंग. तो वो इंटरसेक्शनैलिटी हमें नज़र आती है प्राइवेट और पब्लिक स्फेयर्स की विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वो नैरेटिव बिल्डिंग यू नो स्ट्रेंथन होती जा रही है, पॉलिटिकल फ्रिक्शन बढ़ती जा रही है.
4: एंड द फैक्ट दैट दे वर नॉट ओनली अवेयर ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी, दे वर मोर अवेयर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द नेक्स्ट पर्सन. और वो आइडेंटिटी हमारा दोस्त पे स्टैंड करती है, वो था रिलीजन. इफ ही इज अ हिंदू, ही इज द एनिमी. इफ ही इज अ मुस्लिम, ही इज एन एनिमी. इफ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम इज अ मुस्लिम, देन ही इज अ फ्रेंड. सो सब कुछ फ्रेंड्स हैं, एनिमीज हैं, उनकी बात कर जो भी दारोमदार है, सिर्फ एक चीज पे था, वो था रिलीजन. तो कितना एक्सट्रीमिज्म पे वो चीज चलेगी, एंड इफ समथिंग रीचेस टू दैट पॉइंट, तो इट विल कॉज chaos.
3: और वो फिर हमें chaos नजर भी आते हैं कि जब एक बिल्कुल वही बात है कि वो जो नैरेटिव्स हैं बहुत एक्सट्रीमिस्ट सिचुएशन पे चले गए. जैसे ही स्टोरी में हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें वही मसले मसाइल नज़र आने लगते हैं। हम एक और हमें इसमें वाक्या भी मिलता है जहाँ पे लेनी जो है बच्ची वो अपने जो कुक होता है उसके घर काम करता है इमाम दीन, उसके साथ पीर पिंडो एक गाँव है जो कि फिर बाद में इंडिया में चला गया, लेकिन वहाँ पे सिख और मुस्लिम इकट्ठे रह रहे हैं। तो हमें उस गाँव में प्री पार्टीशन यही सिचुएशन मिलती है कि वो दोनों लोग यही बातें करते हैं कि यू नो ये सिर्फ पॉलिटिशियंस की बातें हैं और उनकी बस ऑरेटरी है, रेटरिक है उनका, ये चीज़ें हमारे तक कभी भी नहीं पहुँचेंगी। इवन दे ऑल्सो से कि सिर्फ शहरी लोगों की बातें हैं, ये गाँव में नहीं पहुँचेंगी और हम हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहेंगे हिंदूज और मुस्लिम्स। बट इन द लास्ट चैप्टर्स और इन द सेकेंड हाफ ऑफ द बुक वी गेट टू सी के वहाँ पर फिर क्या क्या क्या बुरा हुआ और उन्होंने कैसे उन्हीं लोगों ने जो एक दूसरे के दोस्त थे उन्होंने एक दूसरे को कैसे मारा।
4: आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट बाप्सी सिद्वा है कि कितने सटल तरीके से उन्होंने डिफरेंसेस बताए हैं कि अच्छा पॉलिटिक्स कितनी डिफरेंट है आम लोगों से, तो पॉलिटिशियन की बातें सिर्फ वहां तक हैं। फिर ये भी बताना कि शहरी लोगों के रहन सहन में अप्रोच में बहुत फर्क है, हम गाँव के हैं, वी आर क्लोजर टू ईच अदर, हम वो सारी चीज़ें नहीं करेंगे। लेकिन द सैड पार्ट इज कि वो ऐसा नहीं मेंटेन रख सके, वो जितनी करप्शन
3: इवेंचुअली वो इन्फ्लुएंस आया ही आया, वो आग जो शहरों से निकली वो और जो पार्लियामेंट्स और इस तरह की पॉलिटिकल लोकेल्स पे हुई वो कहीं ना कहीं उनके गांव में भी और गांव की गलियों में घरों में भी पहुंच गई।
4: एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वायलेंस वाज सो ह्यूज दैट आई डोंट थिंक अ ह्यूमन आई, इफ देयर इज एनी ह्यूमन आई, कैन बेयर टू विटनेस दैट। आप मंटो की कहानियाँ देखें, आप कृष्ण चंद्र की कहानी देखें, आप नॉवल में भी पढ़ें, इतना ज़्यादा वायलेंस है दैट पीपल आर नॉट अफ्रेड ऑफ कटिंग द थ्रोट्स ऑफ अदर पीपल, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ लाइटिंग देम ऑन फायर, घर जला रहे हैं, लोगों को जला रहे हैं, लोग भाग रहे हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा।
3: वापस आएंगे कि जैसे किताब में अगर देखें तो हम जैसे से बिटवीन द नैरेटिव पहुँचे हैं, हाफ किताब के करीब पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे लोग अगैन वही जो उनके जो लीडर्स फॉलो कर रहे थे, जो रिलीजियस सिम्बल्स को जैसे वो पोलिटिकली यूज़ कर रहे थे, वो कैसे आम इंसान आम लोगों ने भी करना शुरू कर दिया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुस्लिम्स जो थे तो उन्होंने अपने मुस्लिम लीडर की चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दिया, जुम्मा पढ़ना शुरू कर दिया, टोपियाँ पहनना शुरू कर दी, सुरमे लगाना शुरू कर दिए। ऑन दी अदर हैंड जो हिंदूज थे वो अपने उन लीडर्स को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि अगेन वो जो रिलीजियस नैरेटिव था वो कैसे बिल्ड करता जा रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगेन बुक की तरफ दोबारा जाऊँगी। ऑन पेज नंबर 93 इन द बुक वी सी एज नरेटेड बाई लेनी दैट गांधी, जिन्ना, नेहरू, इकबाल, तारा सिंह, Mount Patton are the names I hear, and I become aware of religious differences. It is sudden. One day everybody is themselves, and the next day they are Hindu, Muslim, Sikh, Christian. People shrink, dwindling into symbols. एंड अगेन इसी तरह से फिर वो मुस्लिम्स की बात करती है कि वो कैसे सुरमे पहने लगे, टोपियाँ पहने लगी। ऑन दी अदर हैंड आया जो है वो हिंदू होती है, क्योंकि तो वो अपने डिफरेंट गॉड्स और गॉडेसेस जो भी उनके देवी वगैरह होते हैं मंदिरों में जाके वो चढ़ावे चढ़ाने लग जाती है, एंड शी काइंड ऑफ सीक्स ट्राइज टू सीक प्रोटेक्शन इन देयर इन दोज आर्म्स एंड इन दोज चैरिटीज। तो इस तरह की चीज़ें हमें मिलती हैं। और फिर ग्रेजुअली बिल्कुल जब हम तकरीबन मिडल ऑफ द नावल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक्चुअली द सिचुएशन हैज़ वर्सनड अप, और अब ड्यूरिंग पार्टीशन हम वाले फेज में आ जाते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत शदीद किस्म के जो है ना वो वायलेंस हो रहा है, राइट्स हो रहे हैं, मॉब मेंटेलिटी इज गेटिंग जस्ट आउट ऑफ कंट्रोल। अच्छा फिर यहाँ पे क्या है कि लाहौर जैसे शहर में रहते हुए लोग सुन रहे हैं कि दिल्ली में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, मुंबई में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। तो यहाँ पे जो लाहौर में रहने वाले मुस्लिम्स थे, अपॉन हियरिंग दोज न्यूज़ एंड नैरेटिव्स व्हाट दे देन स्टार्ट टू डू, दे एक्चुअली अगेन स्टार्ट डैमेजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ हिंदूज हिंदूज देयर। वहाँ पे आयशा वो हमने इंसिडेंट भी देखे हैं जैसे डिस्कस किया था शालमी वाला,
4: when the ice candy man he takes that ayah with him and he shows her that how the houses were burning and the people the Hindus they were running everywhere and he was not feeling anything. वो उसको एक celebration के तौर पे देखते हैं, तमाशा कहते हैं ये तमाशा है
3: और तुम सब देखो
4: देखो।
3: और वो फिर वो इकट्ठे होते हैं वहीं पे एक जगह पे घर के छत पे, आइस कैंडी मैन के घर के छत पे वो एक साथ जाते हैं, वो लेनी और आया को लेके जाता है और वहाँ पे वो दिखाते हैं कि वो शालमी है बिकॉज दैट वाज देन एरिया ऑफ हिंदू पॉपुलेशन।
4: तो वहाँ पे दिस इज अ वेरी मिजरेबल कंडीशन टू बी इन दैट यू एज अ ह्यूमन आर नॉट एबल टू फील एनीथिंग फॉर द पीपल हु आर बर्निंग टू डेथ अलाइव। Rather, you are calling it tamasha.
3: Yeah.
4: Or
3: that is actually the insensitivity that is also happening here. Like, abhi hum Gaza wali situation bhi dekhe, to hum apni mobiles mein reels dekh rahe hain, videos dekh rahe hain, what is happening there. We are, but kind of, bas phir hum scroll down karke niche chale jate hain. We don't do anything about it.
4: It's like when you give certain people, certain nations, certain communities, certain identities, you strip off the basic humanity or human value from those people. तो बाकी जितना भी सारी दुनिया है वो डिसेंसिटाइज हो जाती है. इट डज नॉट अफेक्ट देम व्हाट एवर इज हैपनिंग टू द अदर पीपल. तो यही चीज यहाँ पर इनके साथ होगी. लेकिन एक और जो चीज है जो मुझे लगता है बैप्टिस्ट सिद्धवा ने हमारे लिए छोड़ दी है, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ रिलीजन. कि जहाँ पर रिलीजन एक थ्रेट भी था, वहां पर पीपल वर फाइंडिंग peace or some solace in religion as well.
3: Refuge in it as well.
4: For example, the people who were changing their religion, jo Christian the ya wo Hindu ban jate the, jo Hindu the wo Muslim ban jate the.
3: Ab jaise wo you know political spectrum mein religion ko use kiya ja raha hai,
4: so everybody was using
3: aur isi tarah se jo personal level pe bhi hum dekhte hain, to log kahin na kahin jaise untouchable shudar caste se jo Hindus the, to wo they were converting into Christianity or they were turning into Muslims. Wo apni puri identity change kar rahe the, uske sath jo rituals to unko follow kar rahe the, kalma सीख रहे थे. तो एक हमें आगे जाके चैप्टर्स में नजर आते हैं कि दैट देयर वाज दिस माली नेम्ड मोती, वो भी अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लेता है. और फिर हरी है तो वो बन जाता है हिम्मत अली, ठीक है, और वो वैसी टोपी पहनने लग जाता है, सुरमा लगाने लग जाता है. तो कुछ लोग उसमें रिफ्यूज ढूंढ रहे थे. इवन आया जब वो चढ़ावे चढ़ाती है तो शी इज ऑल्सो ट्राइंग टू आस्क हेल्प फ्रॉम हर गॉड्स कि उसको जो है ना वो रेस्क्यू करे इस सिचुएशन से. ऑन दी अदर हैंड मुस्लिम्स को देखें तो वो अपनी उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करें. फिर हम ये पेज नंबर 137 पे आते हैं, तो यू नो शालमी मार्केट और शालम मार्केट से तुम सारे ही वाकिफ है लाहौर में. तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि इट वाज अ लोकेलिटी ऑफ हिंदू कम्युनिटी व्हिच वाज बर्नड बाय मुस्लिम्स, एंड देन हाउ दे एक्चुअली एग्रीवेटेड द सिचुएशन कि उसमें उनको बजाय कि वो पानी से उसको बुझाते तो जो रेस्क्यू की हेल्प भी आई, तो वो दे एक्चुअली दे वाज टैंक्स ऑफ पेट्रोल दैट अगेन. वो वहाँ पे आपको ये भी नजर आता है कि हाउ कुड humans commit such bestiality and a wildness in the name of religion. तो कहीं ना कहीं आप question करने लग जाते हैं कि इंसान जो है इतना intellectual और intelligent being है, और हम हमेशा से celebrate करते हैं इस चीज़ को western philosophy में भी और generally religious narratives में भी.
4: And the thing that shakes you questioned to your core is the fact that every act of brutality was preceded by that slogans of Allahu Akbar.
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल. जहाँ पे एक और बिल्कुल मुझे आपने याद कराया, एक और वाक्य आता है कि वो वहाँ पे दो मुस्लिम्स मॉब्स हैं, वो दो जीप्स लेके आते हैं और एक हिंदू उनको मिल जाता है वहाँ पे. पहले वो उसको मारते हैं और फिर वो उसकी एक टांग एक जीप से बांधते हैं, दूसरी टांग दूसरी जीप से बांधते हैं. अगर मैं उसका कोट भी कर पाऊँ तो खैर वो कोट करना भी बहुत मुश्किल होगा, बट या दिस इज ऑन द पेज नंबर 135
4: द हिंदू
3: बुक. तो फिर वो और फिर उसकी पूरी बॉडी को टियर कर देते हैं बिकॉज दे यू नो ड्राइव दोज जीप्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. तो वहाँ पे और फिर वो सेलिब्रेट करते हैं, एंड व्हेन दे स्टार्ट देयर जीप्स दे से अल्लाहू अकबर. सो यू नो द ब्लाइंडनेस दैट इज देयर, वो आपको नजर आती है कि वो अनक्रिटिकली यूज करे हैं उन नैरेटिव्स को. तो बहुत ही इस तरह के काफी सारे आपको इसमें वाक्यात मिलते हैं बुक में जो कि आपको हिला के रख देते हैं. मंटो भी पढ़ो, ठंडा गोश्त पढ़ते हैं अगर आप कहानी पढ़े. इसके अलावा और भी
4: एक स्टोरी है द लेटर फ्रॉम अ प्रोस्टिट्यूट, लेटर फ्रॉम अ प्रोस्टिट्यूट. उसमें भी एक सेम इंसिडेंट वो कोट करती है कि एक मुस्लिम गर्ल है बतूल, शी वॉज अ पठान गर्ल, तो उसके बाप को पहले जो हिंदू मॉब है वो मारता है. दे गाउजेज आउट हिज आईज, दे कट ओपन हिज एब्डोमेन एंड दे टेक आउट ऑल द एंट्रल्स एंड दे पुट इट आउट ऑन द ग्राउंड एंड देन दे रेप ऑल ऑफ द वुमेन ऑफ द हाउस वन बाय वन. सो द एक्ट ऑफ ब्रुटैलिटी that protagonist or that narrator or that prostitute, she questions everything. She says that I have read Islam and whatever they are doing is not Islam. This is Satanism. This is callousness. This is cowardice. ये वो सारी चीज़ें हैं, ये कहीं पर भी कोई भी religion वो नहीं सिखाता
3: है. Exactly. और उसमें जब हम मंटो की एक और कहानी पढ़ते हैं, वो खोल दो, उसमें यही है कि वो मुस्लिम गर्ल होती है, उसको बचाने के लिए वो मुस्लिम लड़के जाते हैं, but they eventually they keep on raping

0: 6, बोरियत को भगा दो।
1: Assalamu alaikum, and then me and my friend Aisha are again back with our last phase of our discussion on this book, Ice Candy Man. जैसे हम आगे post partition वाले phase में चले जाते हैं किताब में, तो हम देखते हैं कि वो again कैसे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं. And a very important incident happens afterwards कि जहाँ पे जिस मुस्लिम मॉब मेंटालिटी has kind of aggravated और वो हर जगह जा रहे हैं और जो नॉन मुस्लिम हैं उनको ढूंढ ढूंढ के मार मार के निकाल रहे हैं, तो they also come to Lenny's house और उनको वहाँ पे पता होता है कि यहाँ पे डिफरेंट रिलीजियस आइडेंटिटीज के लोग काम करते हैं, तो उन सबका पूछते हैं, तो उसमें से कोई मुसलमान हो चुका है, कोई क्रिश्चियन हो चुका है, तो वो बच जाते हैं. एंड दे ऑल्सो यू नो लुक फॉर द प्रूफ एज वेल. इस तरह के थोड़े इंसिडेंट्स हमें मंटो की स्टोरीज में भी मिलते हैं. बट देन दिस आइस कैंडी मैन, हिज फेस इमर्जेस आउट ऑफ दैट मॉब, और वो फिर आके जो है ना वो पूछते हैं कि वो हिंदू औरत जो तुम लोगों के घर काम करती थी वो कायम आया की बात करते हैं. तो इमाम दीन, हु इज मुस्लिम कुक हु वर्क्स इन एट द हाउस ऑफ लेनी, ही काइंड ऑफ कन्फ्रंट्स

www.musicbeat.edu.ek. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया। Listen, learn, discover. With radio station FM 92.6, UCP ki duniya.
1: www.ucp.edu.pk FM 92.6, life, station of the nation.

www.musicbeat.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: जी मेरे मोहतरम सामईन, क्या आपने इस दो गाने को वैसा ही पाया जैसे मैंने आपसे कहा? आप इसकी शीरीनी से भरपूर तरीके से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। लेकिन कि जब भी जब मैं किसी लंबे सफ़र पे जाता हूँ तो मैंने ये इसके गाने की सीडी रखी हुई है और जितनी बार भी सुनूं मुझे उतना ही ज़्यादा सुरीला लगता है, बल्कि आगे से ज़्यादा सुरीला लगता है और मुझे अपनी कम फहमी का एहसास मज़ीद दिलाता है कि मैं क्यों इतना ज़्यादा नहीं जानता था। हर दफ़ा ये एक नई चहत मेरे दिमाग में खोलता चला जाता है। तो जिक्र हो रहा था ऋषि दत्रे साहब का। ऋषि दत्रे साहब ने एक तरफ भांजे को मुतारिफ करवाया तो उन्होंने मेरा ख्याल है बैलेंस करने के लिए अपने एक भतीजे को भी मुतारिफ करवाया। उनका नाम था मास्टर सफदर हुसैन। मोहतरम सामईन, इसकी तफसीलात आपको अगले प्रोग्राम में बताई जाएंगी। वक्त की कमी की वजह से आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया। नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया। लिसन, लर्न, डिस्कवर विद रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: www.ucp.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen, learn, discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया। लिसन, लर्न, डिस्कवर विद रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: www.music.edu.pk FM 92.6 Live Station of the Nation.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dhanyan.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCD Tuning.

0: 92.6.
1: Number one radio station, FM 92.6, UCP ki duniya.

0: News. मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
1: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी।
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस।

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबिल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: Assalamu alaikum. This is Amna Naeem, a lecturer from the Faculty of Languages and Literature, UCP. Aaj again, maine ek aur book select ki hai. That is Ice Candy Man by Bap Sidwa. And I'm going to discuss this book with my friend and colleague, Miss Aisha Khan, who is also a lecturer, in the Faculty of Languages and Literature. The reason behind, selecting this particular work and novel is that it's a story about the 1947 partition of the subcontinent and how the narrative that is there and the situations that are there that have been narrated by Bap Sidwa, they're still kind of relevant in the contemporary situation of Pakistan. Kyunki wohi jo hamare religious differences badh gaye the back in that time, 1947 mein, aur jiski wajah se phir, Hindu Muslim fasadat hue, these communities killed each other, they went against each other. Wohi cheeze kahin na kahin aggravate kar चुकी हैं आज की सिचुएशन में ही भी, और वो कहीं वो नेशनैलिटीज या नेशंस से निकल के

0: very title of this book. So yes, over to you, Miss Aisha.
1: Thank you so much, Miss Amna Naeem. Hello, everybody. So why there is a shift in the academia towards partition literature in today's time, this is an important thing. Agar hum apne ird gird dekhein, aaj duniya mein kya ho raha hai, what is happening in Palestine, what is happening in Gaza, people are going through the same trauma, separation, the sort of chaos that we have in the world today, chahe wo Syria ho, wo Congo ho, jahan par bhi aap dekhein, ethnic rights hain, conflict hai, separation hai, anxiety hai, trauma hai, the displacement that the people are going through, the feeling of uprooting, leaving back your homes, जहाँ से आपकी identity निकलती है, तो वो सारी चीज़ें आज भी दुनिया में बहुत ज़्यादा हो रही हैं. And the fact that we have come so far from partition now in today's world, लेकिन अगर हम अपने issues को देखें, analyze करें, तो हमें पता चलेगा that the issues are the same. We have not come out of that religious extremist mindset, वो sectarianism, सारी चीज़ें अभी भी वैसी की वैसी हैं. So it is very important for us to talk about the basic issues, because until and unless we talk about them, we realize ke masla actually mein kidhar hai.
0: To usko resolve nahi kar sakte. To read these books. So, you know, again, ye jo hum aaj book talk kar rahe hai, this is also an initiative of the Reading Circle of Faculty of Languages and Literature. तो हम आज फिर अगेन इस किताब के थ्रू भी यही बात करेंगे, हाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अगेन गेट बैक टू लिटरेचर, रीडिंग योर बुक्स, अपने आसपास एक्सप्लोर करें, आपके आसपास ये यू नो लाहौर जैसे शहर में इतने सारे राइटर्स प्रोड्यूस हुए जिन्होंने इन सब इश्यूज़ की बात की, क्योंकि जब फिर हम उनकी वर्क्स पढ़ते हैं, उनके अल्फाज पढ़ते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो सेंसिबिलिटीज़ और वो जो क्रिटिकल लेंस है वो डिवेलप होता है, एंड बाय डिवेलपिंग दैट दोज सेंसिबिलिटीज़ वी कैन एक्चुअली स्ट्राइव at least towards making a better future for our own country, for our nation.
1: Because this is the purpose of history. If we have not learned from our history, we are not going to make our future better. So through these books, hum sensitivity apne andar develop kar sakte hain, sensibility develop kar sakte hain, taki hum dekh sakenge kaun si aisi cheeze hain jo ki hum ek loop mein चलती आ रही हैं, एंड वी आर डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, एंड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सम चेंज इफ वी आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन.
0: वो जो वायलेंस के जो साइकिल्स हैं वो चलते आए, और हमने वही देखने कि वो शुरू कहाँ से होते. दिस बुक एक्चुअली हेल्प्स अस यू नो लर्न अबाउट के वो जो आग थी वो इग्नाइट कहाँ से हुई. ठीक है, कि यहाँ पे जो कम्युनिटीज़, अगर हम अपनी खुद हिस्ट्री देखें, संस्कृति हिस्ट्री या इंडस सिविलाइजेशन है, तो उसमें हम देखते हैं कि यू नो द कम्युनिटीज़ वर लिविंग टुगेदर इन हार्मनी विद ईच अदर. ठीक है, दैट वाज द सिचुएशन बिफोर द अराइवल ऑफ दीज यू नो ब्रिटिश पीपल. ठीक है, ऑफ कोर्स एक यू नो कहीं ना कहीं फ्रिक्शंस तो होती हैं, यू नो बहुत सारे डिफरेंट राजा महाराजा थे, और उनकी अपनी छोटी छोटी यू नो बादशाहतें थी, और उनके आपस में वो कहीं ना कहीं वो लैंड के लिए और पावर के लिए लड़ाइयाँ तो रहती थी, बट फिर भी देयर वॉज दिस हारमनी बिटवीन द यू नो पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियस अफिलिएशंस. में हम अगर थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन यू नो ज़्यादा हिस्ट्री को डिग इन करें, तो ब्राह्मिन्स में भी यू नो इस तरह की सिचुएशंस रही हैं कि वो यू नो इमाम हुसैन और इमाम अली को यू नो फॉलो करते हैं. आज भी उनके कुछ इस तरह के रिचुअल्स हैं जो मुहर्रम के दिनों में वो फॉलो करते हैं. हम भी उनकी यू नो होली और दिवाली को रिस्पेक्ट करते थे. इसी तरह से यू नो वो भी हमारी ईद वगैरह में यू नो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के इवेंट्स को रिस्पेक्ट करते थे, हम उनको मिल के मनाते थे. एटलीस्ट इस तरह की लड़ाइयाँ नहीं थी, लेकिन ये शुरू तभी हुई जब ये सारा 1947 का में सिचुएशन शुरू हुई, एंड व्हेन एक्चुअली दिस ब्रिटिश पीपल एक्चुअली ट्राइड टू यू नो रिड्यूस पीपल इनटू रिलीजियस सिंबल्स, इनटू देयर रिलीजियस आइडेंटिटीज, और फिर वहाँ पे फिर हम एक दूसरे से कितने ज़्यादा दूर होते गए, और वही चीज़ें आज मज़ीद एग्रेवेट होती जा रही हैं कि विदिन इवन द यू नो इस्लामिक ट्रेडिशन है, जो मुस्लिम कम्युनिटी, हमारे पास बहुत सारे जो है ना सेक्शंस बन गए हैं, और उनमें शदीद किस्म की फ्रिक्शन आ गई है, जो कि अब बहुत हद तक ब्लडशेड की तरफ भी जाती जा रही है.
1: आई गेस द ब्यूटी ऑफ द नॉवल लाइज इन द फैक्ट दैट बापू सिद्धा इज गिविंग अस डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट टाइम फ्रेम्स एज वेल. इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द डिफरेंसेस, वी शुड लुक एट द फैक्ट दैट व्हाट वर द थिंग्स दैट मेड अस लिव इन दैट हारमोनियस और वेरी पीसफुल एटमोसफियर, वेयर देयर वर हिंदू, सिख्स, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स एंड इवन पारसीज़ as well. They knew that they belong to different religions, but they were living in complete harmony. They were respectful of each other's religious identities. So don't you think it's a very bleak thing that humans have been reduced

0: used to this like a small dot of religious identities and religious symbols. Where is the humanity?
1: Yeah, that is the questions that kind of arise in one's mind when you read these texts or this novel. हम थोड़ा सा अगेन जाएंगे अगेन टाइटल की सिग्निफिकेंस पे कि वो आइस कैंडी मैन क्यों है इसका टाइटल, उसकी अपनी सिग्निफिकेंस क्या है. तो अगर हम उसके बारे में बात करें तो वो यही है कि इट्स बेसिकली द आइस कैंडी मैन इज़ द वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स इन द नॉवल, एंड उसकी जो पर्सनैलिटी है वो प्री पार्टीशन, ड्यूरिंग पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन कैसे चेंज होती है. ही इज़ कॉल्ड आइस कैंडी मैन बिकॉज ही सेल्स दीज पॉप्सिकल्स, आइस पॉप्सिकल्स टू लिटिल किड्स इन अ पार्क. ही इज़ अ मुस्लिम यंग मैन. द टाइटल इज ऑल्सो सजेस्टिव कि वो कैसे आइस कैंडी मैन पहले पार्टीशन में कैसे एक सॉलिड फॉर्म में होता है, आइस की फॉर्म में होता है. आइस इन दिस नॉट इन द टर्म्स ऑफ यू नो कोल्डनेस बट ऑल्सो इन द टर्म्स ऑफ दैट कि वो स्ट्रांग होता है. ही इज अ स्ट्रांग फ्रेंड ऑफ डिफरेंट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियस आइडेंटिटीज. वो एक हिंदू आया है, उसके साथ भी उसकी एक कहीं ना कहीं पसंद की पसंदीदगी है. इसके अलावा और भी बहुत बीच में कुछ हिंदू भी हैं, सिख्स भी हैं, पारसी एक बच्ची है जो कि नरेटर है स्टोरी की, उसका भी वो दोस्त है, उसको वो फ्री पॉप्सिकल्स देता है. तो वो एक अच्छा दोस्त है, एक स्ट्रांग दोस्त है. तो उसकी एज अ पर्सन, एज अ फ्रेंड, वो उसकी स्ट्रेंथ को भी रिफ्लेक्ट करता है. बट वेन वी सी के जो ऐसी जैसी नरेटिव जाता है पार्टीशन की तरफ, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो हीट ऑफ दैट पार्टीशन, वो जो हीट ऑफ पोलिटिकल chaos that started to happen, वो उस हीट की वजह से कैसे फिर मेल्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, लिक्विडिफाई हो जाता है, और फिर उस लिक्विड में आते आते कैसे वो फिर वो इतना ज़्यादा लिक्विडिफाई हो जाता है कि वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है, और वो फिर उस हीट से कितने लोगों को नुकसान पहुंचाता है, कितने वो मॉब्स को लीड करता है, और उन मॉब्स के थ्रू वो कितनी हिंदूज़ को, हिंदू कम्युनिटीज़ को, सिख कम्युनिटीज़ को नुकसान पहुंचाता है. और फिर ग्रेजुअली बाय द एंड ऑफ द नॉवल व्हेन वी आर इन द स्टेज ऑफ पोस्ट पार्टीशन ईयर्स, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि उसका वो कैसे ग्रेजुअली अपनी वो, बिकॉज ही गेट्स कंज्यूम्ड बाय हिज रिलीजियस आइडेंटिटी एंड दैट
0: द मैडनेस,
1: द मैडनेस, द हेट्रेड दैट गॉट इग्नाइटेड ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ पार्टीशन, वो कैसे एग्रीवेट होती जाती है और वो उसी से कंज्यूम होते होते कैसे इवेंचुअली इवेपोरेट हो जाते हैं.
0: एंड आई गेस दिस इज द सेम थिंग दैट लॉट ऑफ राइटर्स हु रोट अबाउट एंड ड्यूरिंग पार्टीशन लाइक मंटो और कृष्ण चंद्र, दे हैव टॉक्ड अबाउट दिस फैक्ट दैट व्हाटएवर was happening during partition in the name of religion was not religious at all. It wasn't something that the religions used to preach and still preach. It was something that the people wanted to do. It was pure satanism. As if the madness in them was unleashed.
1: वो जो एक इंसान के अंदर एक madness होती है, craze होता है, insanity, wild side जो होती है ना, वो कैसे निकल के आती है. They use these political narratives, but again वो कहीं ना कहीं उनमें पनाह लेने की कोशिश करते हैं, but actually वो खुद अपने आप में जो है ना वो बहुत ज़्यादा wild होते हैं. वो उनकी और उनकी wild side कैसे निकल के आती है वो हमें पता चलता है, और किस कैसे निकल के आई सब community
0: के. We have been listening to the fact that nothing is apolitical. So these writings actually show us what happens when you politicize religion.
1: हाँ,
0: आप रिलीजन को पोलिटिसाइज कर देते हैं, एंड व्हेन पॉलिटिक्स एंटर योर माइंड एंड योर आइडियोलॉजी इज पोलिटिसाइज्ड, आपके डोमेस्टिक स्फेयर में वो एंटर हो जाती है, आपकी सारी बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाती है. सो इफ दिस इज द ओनली लेंस थ्रू विच यू आर लुकिंग एट द थिंग्स, देन दिस इज द एंड यू आर गोइंग टू मीट, द एंड ऑफ आइस कैंडी मैन एंड द एंड ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, बी देम हिंदू, सिख्स, ईसाईज और मुस्लिम्स, ऑल सफर्ड. Each and everybody suffered.
1: और वो जो उनकी दोस्तियाँ थी वो कैसे कितनी शदीद किस्म की दुश्मनी में बदल जाती हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे. इसके अलावा और भी बहुत सारी राइटिंग्स हैं. हमने मंटो अगर हम पढ़ें तो उसमें बहुत सारी इसी किस्म की कहानियाँ हैं. तो वी ऑल्सो काइंड ऑफ सी दैट मंटोएस्क टेस्ट एंड अप्रोच इन द नैरेटिव स्टाइल ऑफ वापसी सिद्वा इन दिस नॉवल. तो शी वॉज एक्चुअली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मंटोज राइटिंग्स. और साथ ही हम और भी कुछ राइटर्स की बात करें तो उनकी भी उसमें हमें एक फ्लेवर मिलता है. इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारी मूवीज आई हैं. ये खुद नॉवल जो है इस पर भी एक मूवी बनाई गई. आमिर खान इज आई थिंक प्लेइंग द रोल ऑफ आइस कैंडी मैन, एंड द नेम ऑफ दैट मूवी इज अर्थ 1947. और एक और क्रैकिंग इंडिया भी इसका दूसरा टाइटल है. So anyways, again, now we will, without wasting, you know, any more time, we will get into the, you know, reading the novel. The pura novel hai, it consists of 32 chapters. Aur bilkul jo shuru ke 8 se 10 chapters hain, usme hum dekhte hain before partition situation kya thi. सब कॉन्टिनेंट की एंड स्पेसिफिकली लाहौर में सिचुएशन क्या थी, क्योंकि पूरा जो नावल है वो लाहौर में सिचुएटेड है. वारिस रोड और क्वींस रोड, जेल रोड, डेली गेट, मोची गेट, शालमी, ये लोकेलिटीज हमें नज़र आती हैं. इनका बहुत ज़्यादा जिक्र नज़र आता है.
0: वन ऑफ द ब्यूटीज ऑफ दिस नावल इज दैट फॉर एनी आउटसाइडर, फॉर एनी फॉरनर, इफ दे रीड द नावल दे विल गेट टू नो लाहौर.
1: दे कैन सी
0: लाहौर थ्रू द आईज ऑफ बख्शीश.
1: यस, थ्रू द आईज ऑफ दिस novel they could see and you know imagine the streets of Lahore, the society of Lahore. So agar aapko padhne ka bahut shauk hai Lahore ke bare mein bhi, so this book actually is a very good one for that matter. Acha shuru hum karenge, agar hum dekhe to narrator kaun hai kahani ka, wo hai hamare paas ek Parsi bachchi hai jo ki narrate kar rahi hai, jo ki kahani kissa bayan kar rahi hai jo uske aankhon ke samne hua. So ye jo Lenny hai, she is a young girl, 7-8 saal ki ek bachchi hai, aur wo jo hai na wo ek Parsi ghar mein rehti hai, aur unke ghar mein bahut sare mulazim hai jo different religious identities se belong karte hain. Yani ki uski jo bachchi ki apni jo ek baby sitter hai, ये नैनी है, उसका नाम आया है, वो एक हिंदू लड़की है 16-17 साल की. इसके अलावा उसके घर में एक इमाम दीन कुक काम करता है जो कि एक यू नो एल्डरली एज का एक मुस्लिम आदमी है. इसके अलावा अब अपनी बेबी सीटर के साथ होता क्या है कि लैनी जो है वो रोज़ी एक पार्क में जाती होती है, ठीक है, और उस पार्क का नाम भी क्वीन विक्टोरिया पार्क है, और वहाँ पर उस पार्क के अंदर एक्चुअली देयर इज़ दिस स्टैचू ऑफ क्वीन विक्टोरिया एज वेल, विच एक्चुअली इज सिम्बॉलिक ऑफ द ब्रिटिश राज इन द पार्टीशन ईयर्स, कि कैसे लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी ब्रिटिश राज के यू नो साए में गुजार रहे थे, और फिर लेकिन उनकी आपस में एफिलिएशंस बहुत अच्छी थी एंड दे ऑल वर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. तो वो सेंटीमेंट्स, वो सिचुएशन, वो हमें उनकी कॉन्वर्सेशंस में नज़र आती है, लेकिन वो आपस में हिंदू मुस्लिम सिख Christians, वो सब आपस में जो है ना वो बड़े मिल के रहते थे.
0: As if they had only one enemy at that point.
1: Yes, yes, yes. That was actually the scene. तो वो चीज़ नज़र आती है. There is another very beautiful thing. अगर हम इसको थोड़ा सा post colonial lens से देखें, तो जो Bapsi Sidhwa है, she is also kind of हमें बता रही है कि हमारे indigenous beauty standards जो है ख़वातीन को लेके वो कितने different हैं western standards से. तो वो उनको बल्कि celebrate करती है rather than looking down upon them. So that is actually a very good thing about these post-colonial writers, कि वो अपने indigenous culture को, beauty standards को, और जो pre-violent situation थी उसको कैसे celebrate करते हैं. तो इस तरह की हमें चीज़ें हमें शुरू के chapters में मिलती हैं. और again overall अगर हम देखें तो इस chapter में, इन chapters में बात हो रही है अगेन उनकी हारमनी की, हारमनी बिटवीन पीपल बिलोंगिंग टू रिलीजियस सिचुएशन. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी गेट टू सी और रीड इन दिस नॉवल इज द अप्रोच एंड द परस्पेक्टिव ऑफ पारसी कम्युनिटी टूवर्ड्स दिस इंसिडेंट ऑफ 1947 पार्टीशन. क्योंकि ये पोलिटिकल सिचुएशन में तो ये बातें चल ही रही थी, ये डिबेट्स हो ही रही थी कि जी नेहरू और जिन्ना के आपस में डिफरेंसेस चल रहे हैं, और फिर हिंदूज क्या कर रहे हैं मुस्लिम्स के अगेंस्ट, और मुस्लिम्स क्या चाहते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. तो ये वाली सारी सिचुएशन हमें नज़र आती है.
0: अच्छा, जब भी हमने हिस्ट्री को देखा है तो 1947 पार्टीशन की जब भी बात हुई है, मोस्टली सारा जो फोकस है वो हिंदूज और मुस्लिम पर ही रहा है. सो व्हाट डू यू थिंक इज द सिग्निफिकेंस दैट Bapsi Sidhwa चोज अ पारसी गर्ल टू बी अ नैरेटर?
1: उसमें वही बात है कि वो अपना भी, बिकॉज Bapsi Sidhwa herself was a Parsi, तो वो अपना एक नैरेटिव भी बयान कर रही है, बयान करने की कोशिश कर रही है कि हम लोगों ने, हमारे लोगों ने इस सिचुएशन को कैसे देखी. एंड शी ऑल्सो इज ट्राइंग टू वोकलाइज हर पर्सपेक्टिव कि हम इस सारी सिचुएशन में कहाँ थे, और फिर हमने क्या किया, और क्या हम कर सकते थे, और क्या हमने नहीं किया. बिकॉज
0: सो इज इट लाइक अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव हु इज वॉचिंग एवरीथिंग ऑब्जेक्टिवली
1: एंड ट्राइंग टू गिव अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव ऑन द थिंग्स, कि हाउ द अदर पीपल वर इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दैट सिचुएशन, और उनमें उनके अपने अपने स्टेक्स क्या थे, और उनके फिर वॉयलेंट एक्ट्स क्या थे. बिफोर आई डूइंग मोर डिस्कशन ऑन दैट, वी हैव टू गो फॉर अ म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद फिर हम दोबारा शुरू करते हैं.
0: स्टे ट्यून्ड.

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: We are back again with our discussion on the book Ice Candy Man by Baptiste Sidwa. ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पारसी पर्सपेक्टिव की कि कैसे जो स्टोरी है वो हमें एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देती है, एक पारसी कम्युनिटी का पर्सपेक्टिव हमें मिलता है अपॉन द सिचुएशन, क्योंकि मेजरली वो स्टेक होल्डर्स नहीं थे इस सारी सिचुएशन में. तो उनका पर्सपेक्टिव और वो जो अप्रोच उन्होंने यूज़ की एम्प्लॉय की उस टाइम पे उस सिचुएशन में, तो वो क्या थी, उसमें हमें कुछ ना कुछ रेफरेंसेस भी किताब से मिलते हैं. सो देयर इज दिस कर्नल पर्सन, कर्नल ब्रूचा, ही इज अ नाइस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस पारसी कम्युनिटी. उनका आपस में एक डिस्कशन चल रहा है उनकी अपनी कम्युनिटी में कि व्हाट आर दे गोइंग टू डू इन दिस सिचुएशन. तो उसमें फिर इवेंचुअली उनकी आपस में थोड़ी सी बहस मुबहसा चलता है, बट यहाँ पे हमें आके फाइनल उनका जो एक मिलता है कि वो उनका स्टांस क्या होगा, वो यही होता है दैट ही सेज के जो भी इस जगह पे जहाँ पे हम रहते हैं लाहौर में, जो भी इस लैंड को रूल करना चाहता है जस्ट बी इट, और हम किसी भी किस्म की रेजिस्टेंस शो नहीं करेंगे, ना ही हम किसी किस्म की कोई साइड लेंगे. आई वुड लाइक टू कोट फ्रॉम द बुक, वहाँ पे दैट पर्सन कर्नल बरूचा सेज, वी व्हेन ही काइंड ऑफ रिवाइव्स और रिकॉल्स हिज हिस्ट्री इन फ्रंट ऑफ हिज पीपल, दैट व्हेन वी वर किक्ड आउट ऑफ पर्शिया बाय द अरब्स 13 इयर्स अगो, व्हाट डिड वी डू, डिड वी शाउट और आर्ग्यू, नो, roars the colonel and hastily provides his own answer before anyone can interrupt. We got into boats and sailed to India. Furthermore, we aage hum agar isme dekhen to page number 39 pe he says that let whoever wishes rule, Hindu, Muslim, Sikh, Christian, we will abide by the rules of their land. And he further says, as long as we do not interfere, we have nothing to fear. As long as we respect the customs of our rulers, as we always have, we will be all right. So again, he gives a very reasonable and a very practical approach कि हमें क्या approach join करनी चाहिए, और वही चीज़ उन्होंने practice भी की during partition, कि उन्होंने किसी की side नहीं ली, rather they were neutral and they were friendly with religious affiliation.
4: Because I think because they were in minority, they knew that they were out of the race.
3: True.
4: वो तो नहीं आ सकते, और जैसे उसने कहा कि अगर हम इंटरफेयर करेंगे तो फिर फ्रिक्शन होगी
3: और फिर वो विल हैव टू फियर समथिंग, वी विल बी वाइप्ड आउट. ही आल्सो सेज दैट कि अगर हम किसी भी किस्म की कोई वो करते हैं तो हम उसमें ऐसे ही रगड़े जाएंगे, और इवेंचुअली उनका कोई स्टेक होल्डर है ही नहीं, क्योंकि उनको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों का पता है कि उनकी एज सच वो स्ट्रेंथ में तो है ही नहीं, ना ही वो एक मेजोरिटी में है, तो उनको इस रेस में पड़ना ही नहीं चाहिए. सो दे वर यू नो प्लेइंग वेरी सेफली. And that was, I think, also the very, very, very practical approach. तो फिर हम चैप्टर्स में देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता से चीज़ें, पहले कैसे वो सारे जो वो फ्रेंड्स हैं या वो जो वर्कर्स हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं डिफरेंट घरों के, डिफरेंट रिलीजियस आइडेंटिटीज़ के, वो कैसे वो पार्क में इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं एक दूसरे के साथ, उनके इवन के अफेयर्स भी हैं यू नो हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में भी. सो थिंग्स आर वेरी ईजी बिटवीन ऑल ऑफ दीज पीपल. आई
4: गेस द फैक्ट दैट दे वर नॉट मेड कॉन्शियस और अवेयर ऑफ देयर रिलीजियस आइडेंटिटी एट दैट पॉइंट इन टाइम, दे वर लुकिंग एट ईच अदर लाइक ह्यूमंस
3: एग्जैक्टली,
4: लाइक ऑर्डिनरी पीपल.
3: क्योंकि अभी तक वो जो पोलिटिकल स्पेक्ट्रम में बातें चल रही थी, जो लीडर्स की बातें हो रही थी दरमियान में, स्पीचेस हो रही हैं, वो बहुत हद तक बस उसी स्पेक्ट्रम में थी. एज सच वो लोगों की ग्रास रूट लेवल पे वो नैरेटिव्स उस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे थे, ना ही पहुंच रहे थे.
4: सो व्हेन पॉलिटिक्स इंटरसेक्टेड विद द पर्सनल लाइफ, देयर आइडियोलॉजी, तो वो सारी चीजें ही चेंज होती,
3: आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती हैं. कि उनकी वही बात है कि वो जो देन द प्राइवेट डिड नॉट रिमेन प्राइवेट एनी लॉन्गर, इट बिकेम अ पॉलिटिकल थिंग. तो वो इंटरसेक्शनैलिटी हमें नज़र आती है प्राइवेट और पब्लिक स्फेयर्स की विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वो नैरेटिव बिल्डिंग यू नो स्ट्रेंथन होती जा रही है, पॉलिटिकल फ्रिक्शन बढ़ती जा रही है.
4: एंड द फैक्ट दैट दे वर नॉट ओनली अवेयर ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी, दे वर मोर अवेयर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द नेक्स्ट पर्सन. और वो आइडेंटिटी हमारा दोस्त पे स्टैंड करती है, वो था रिलीजन. इफ ही इज अ हिंदू, ही इज द एनिमी. इफ ही इज अ मुस्लिम, ही इज एन एनिमी. इफ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम इज अ मुस्लिम, देन ही इज अ फ्रेंड. सो सब कुछ फ्रेंड्स हैं, एनिमीज हैं, उनकी बात कर जो भी दारोमदार है सिर्फ एक चीज पे था, वो था रिलीजन. तो कितना एक्सट्रीमिज्म पे वो चीज चलेगी, एंड इफ समथिंग रीचेस टू दैट पॉइंट, तो इट विल कॉज chaos.
3: और वो फिर हमें chaos नजर भी आते हैं कि जब एक बिल्कुल वही बात है कि वो जो नैरेटिव्स हैं बहुत एक्सट्रीमिस्ट सिचुएशन पे चले गए. جیسے ہی اسٹوری میں ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں تو ہمیں وہ مسئلے مسائل نظر آنے لگتے ہیں. ہم ایک اور ہمیں اس میں واقعہ بھی ملتا ہے جہاں پہ لینی جو ہے بچی وہ اپنے جو کک ہوتا ہے اس کے گھر کام کرتا ہے امام دین, اس کے ساتھ پیر پنڈو ایک گاؤں ہے جو کہ پھر بعد میں انڈیا میں چلا گیا, لیکن وہاں پہ سکھ اور مسلم اکٹھے رہ رہے ہیں. تو ہمیں اس گاؤں میں پری پارٹیشن یہی سچویشن ملتی ہے کہ وہ دونوں لوگ یہی باتیں کرتے ہیں کہ یو نو یہ صرف پولیٹیشینس کی باتیں ہیں اور ان کی بس اوریٹری ہے, ریٹریک ہے ان کا, یہ چیزیں ہماری تک کبھی بھی نہیں پہنچیں گی. ایون دے آلسو سے کہ صرف شہری لوگوں کی باتیں ہیں, یہ گاؤں میں نہیں پہنچیں گی اور ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی رہیں گے ہندوز اور مسلمس. بٹ ان دا لاسٹ چیپٹرز اور ان دا سیکنڈ ہاف آف دا بک وی گیٹ ٹو سی کہ وہاں پہ پھر کیا کیا کیا برا ہوا اور انہوں نے کیسے انہیں لوگوں نے جو ایک دوسرے کے دوست ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو کیسے مارا.
4: آئی وڈ لائک ٹو اپریشیٹ بیپسٹ سدوا ہیئر کہ کتنے سٹل طریقے سے انہوں نے ڈفرینسز بتائے ہیں کہ اچھا پالیٹکس کتنی ڈفرینٹ ہے عام لوگوں سے, تو پالیٹیشین کی باتیں صرف وہاں تک ہیں. پھر یہ بھی بتانا کہ شہری لوگوں کے رہن سہن میں اپروچ میں بہت فرق ہے, ہم گاؤں کے ہیں, وی آر کلوزر ٹو ایچ ادر, ہم وہ ساری چیزیں نہیں کریں گے. لیکن دا سیڈ پارٹ از کہ وہ ایسا نہیں مینٹین رکھ سکے, وہ جتنی کرپشن
3: ایونچولی وہ انفلوئنس آیا ہی آیا, وہ آگ جو شہروں سے نکلی وہ اور جو پارلیمنٹس اور اس طرح کی پولیٹیکل لوکیلز پہ ہوئی وہ کہیں نہ کہیں ان کے گاؤں میں بھی اور گاؤں کی گلیوں میں گھروں میں بھی پہنچی گئی.
4: اینڈ دا میگنیٹیوڈ آف دا وائلنس واز سو ہیوج دیٹ آئی ڈونٹ تھنک اے ہیومن آئی, اف دیر از اینی ہیومن آئی, کین بیئر ٹو وٹنس دیٹ. آپ منٹو کی کہانیاں دیکھیں, آپ کرشن چندر کی کہانی دیکھیں, آپ ناول میں بھی پڑھیں, اتنا زیادہ وائلنس ہے دیٹ پیپل آر ناٹ افریڈ آف کٹنگ دا تھروٹس آف ادر پیپل, دے آر ناٹ افریڈ آف لائٹنگ دیم آن فائر, گھر جلا رہے ہیں, لوگوں کو جلا رہے ہیں, لوگ بھاگ رہے ہیں. اور
3: واپس آئیں گے کہ جیسے کتاب میں اگر دیکھیں تو ہم جیسے سے بٹوین دا نیریٹو پہنچے ہیں, ہاف کتاب کے قریب پہنچتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے لوگ اگین وہی جو ان کے جو لیڈرس فالو کر رہے تھے, جو ریلیجیس سمبلس کو جیسے وہ پولیٹیکلی یوز کر رہے تھے, وہ کیسے عام انسان عام لوگوں نے بھی کرنا شروع کر دیا. جیسے فار ایگزامپل مسلم جو تھے تو انہوں نے اپنے مسلم لیڈر کی چیزوں کو فالو کرنا شروع کر دیا, جمعہ پڑھنا شروع کر دیا, ٹوپیاں پہننا شروع کر دی, سرمے لگانا شروع کر دیے. آن دی ادر ہینڈ جو ہندوز تھے وہ اپنے ان لیڈرس کو فالو کر رہے تھے, کیونکہ اگین وہ جو ریلیجیس نیریٹو تھا وہ کیسے بلڈ کرتا جا رہا تھا. یہاں پہ تھوڑا سا میں اگین بک کی طرف دوبارہ جاؤں گی. آن پیج نمبر 93 ان دا بک وی سی ایز نیریٹڈ بائی لینی دیٹ گاندھی, جنا, نہرو, اقبال, تارا سنگھ, Mount Patton are the names I hear, and I become aware of religious differences. It is sudden. One day everybody is themselves, and the next day they are Hindu, Muslim, Sikh, Christian. People shrink, dwindling into symbols. اینڈ اگین اسی طرح سے پھر وہ مسلمس کی بات کرتی ہے, یعنی وہ کیسے سر میں پہنے لگے, ٹوپیاں پہنے لگی. آن دی ادر ہینڈ آیا جو ہے وہ ہندو ہوتی ہے, کیونکہ تو وہ اپنی ڈفرینٹ گاڈز اور گوڈیسز جو بھی ان کے دیوی وغیرہ ہوتے ہیں مندروں میں جا کے وہ چڑھاوے چڑھانے لگ جاتی ہے. اینڈ شی کائنڈ آف سیکس ٹرائز ٹو سیک پروٹیکشن ان دیئر ان دوز آلمز اینڈ ان دوز چیریٹیز. تو اس طرح کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں. اور پھر گریجولی بالکل جب ہم تقریباً مڈل آف دا ناول میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایکچولی دا سچویشن ہیز ورسنڈ اپ, اور اب ڈیورنگ پارٹیشن ہم والے فیز میں آ جاتے ہیں, اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت شدید قسم کے جو ہے نا وہ وائلنس ہو رہا ہے, رائٹس ہو رہے ہیں, موب مینٹیلٹی از گیٹنگ جسٹ آؤٹ آف کنٹرول. اچھا پھر یہاں پہ یہ کیا ہے کہ لاہور جیسے شہر میں رہتے ہوئے لوگ سن رہے ہیں کہ دہلی میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ممبئی میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو یہاں پہ جو لاہور میں رہنے والے مسلمس تھے, اپان ہیئرنگ دوز نیوز اینڈ نیریٹیوز وٹ دے دین اسٹارٹ ٹو ڈو, دے ایکچولی اگین اسٹارٹ ڈیمیجنگ دا پراپرٹیز آف ہندوز ہندوز دیئر. وہاں پہ عائشہ وہ ہم نے انسیڈنٹ بھی دیکھے ہیں جیسے ڈسکس کیا تھا شالمی والا.
4: When the ice candy man, he takes that aya with him and he shows her that how the houses were burning and the people, the Hindus, they were running everywhere. And he was not feeling anything. وہ اس کو ایک سیلیبریشن کے طور پہ دیکھتے یہ تماشا ہے
3: اور تم سب دیکھو. اور وہ پھر وہ اکٹھے ہوتے ہیں وہیں پہ ایک جگہ پہ گھر کے چھت پہ, آئس کینڈی مین کے گھر کے چھت پہ وہ ایک ساتھ جاتے ہیں, وہ لینی اور آیا کو لے کے جاتا ہے. اور وہاں پہ وہ دکھاتے کہ وہ شالمی ہے بیکاز دیٹ واز دین ایریا آف ہندو پاپولیشن.
4: تو وہاں پہ دس از اے ویری میزریبل کنڈیشن ٹو بی ان دیٹ یو ایز اے ہیومن آر ناٹ ایبل ٹو فیل اینی تھنگ فار دا پیپل ہو آر برننگ ٹو ڈیتھ الائیو. Rather, you are calling it tamasha.
3: Yeah.
4: Or
3: that is actually the insensitivity, na? No. Insensitivity that is also happening here. Like, ab hum Gaza wali situation bhi dekhe, to hum apni mobiles mein reels dekh rahe hain, videos dekh rahe hain, what is happening there. We are, but kind of, bas phir hum scroll down karke niche chale jaate hain. We don't do anything about it.
4: It's like when you give certain people, certain nations, certain communities, certain identities, you strip off the basic humanity or human value from those people. तो बाकी जितना भी सारी दुनिया है वो डिसेंसिटाइज हो जाती है. इट डज नॉट अफेक्ट देम व्हाटएवर इज हैपनिंग टू द अदर पीपल. तो यही चीज यहाँ पर इनके साथ होगी. लेकिन एक और जो चीज है जो मुझे लगता है बैप्टिस्ट सिद्धा ने हमारे लिए छोड़ दी है, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ रिलीजन. कि जहां पर रिलीजन एक थ्रेट भी था, वहां पर पीपल वर फाइंडिंग peace or some solace in religion as well. For example, the people who were changing their religion, jo Christian the ya wo Hindu ban jate the, jo Hindu the wo Muslim ban jate the.
3: Ab jaise wo you know political spectrum mein religion ko use kiya ja raha hai,
4: so everybody was using
3: that. Aur isi tarah se jo personal level pe bhi hum dekhte hain, to log kahin na kahin jaise untouchable shudar caste se jo Hindus the, to wo they were converting into Christianity or they were turning into Muslims. Wo apni puri identity change kar rahe the, uske sath रिचुअल्स थे उनको फॉलो कर रहे थे, कलमा सीख रहे थे. तो एक हमें आगे जाके चैप्टर्स में नजर आते हैं दैट देयर वाज दिस माली नेम्ड मोती, वो भी अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लेता है. और फिर हरी है तो वो बन जाता है हिम्मत अली, ठीक है, और वो वैसी टोपी पहने लग जाता है, सुरमा लगाने लग जाता है. तो कुछ लोग उसमें रिफ्यूज ढूंढ रहे थे. इवन आया जब वो चढ़ावे चढ़ाती है, तो शी इज ऑल्सो ट्राइंग टू आस्क हेल्प फ्रॉम हर गॉड्स कि उसको जो है ना वो रेस्क्यू करे इस सिचुएशन से. ऑन दी अदर हैंड मुस्लिम्स को देखें तो वो अपनी उन चीजों को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करें. फिर हम ये पेज नंबर 137 पे आते हैं, तो यू नो शालमी मार्केट और शालम मार्केट से तुम सारे ही वाकिफ है लाहौर में. तो वहां पे हमें पता चलता है कि इट वाज अ लोकेलिटी ऑफ हिंदू कम्युनिटी व्हिच वाज बर्नड बाय मुस्लिम्स, एंड देन हाउ दे एक्चुअली एग्रीवेटेड द सिचुएशन के उसमें उनको बजाय कि वो पानी से उसको बुझाते तो जो रेस्क्यू की हेल्प भी आई, तो दे एक्चुअली दे वाज टैंक्स ऑफ पेट्रोल दैट अगेन. वो वहां पे आपको ये भी नजर आता है कि हाउ कुड humans commit such bestiality and wildness in the name of religion. तो कहीं ना कहीं आप question करने लग जाते कि इंसान जो है इतना intellectual और intelligent being है, और हम हमेशा से celebrate करते हैं इस चीज़ को western philosophy में भी और generally religious narratives maybe.
4: And the thing that shakes you questioned to your core is the fact that every act of brutality was preceded by that slogans of Allahu Akbar.
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल. जहाँ पे एक और बिल्कुल मुझे आपने याद कराया, एक और वाक्य आता है कि वो वहाँ पे दो मुस्लिम्स मॉब्स हैं, वो दो जीप्स लेके आते हैं और एक हिंदू उनको मिल जाता है वहाँ पे. पहले वो उसको मारते हैं और फिर वो उसकी एक टांग एक जीप से बांधते हैं, दूसरी टांग दूसरी जीप से बांधते हैं. अगर मैं उसका कोट भी कर पाऊँ तो खैर वो कोट करना भी बहुत मुश्किल होगा, बट या दिस इज ऑन द पेज नंबर 135
4: इन द
3: बुक. तो फिर वो और फिर उसकी पूरी बॉडी को टियर कर देते हैं बिकॉज दे यू नो ड्राइव दोज जीप्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. तो वहाँ पे और फिर वो सेलिब्रेट करते हैं, एंड व्हेन दे स्टार्ट देयर जीप्स दे से अल्लाह हू अकबर. सो यू नो द ब्लाइंडनेस दैट इज देयर वो आपको नजर आती है कि वो अनक्रिटिकली यूज करे हैं उन नैरेटिव्स को. तो बहुत ही इस तरह के काफी सारे आपको इसमें वाक्यात मिलते हैं बुक में जो कि आपको हिला के रख देते हैं. मंटो भी पढ़ो, ठंडा गोश्त पढ़ते हैं अगर आप कहानी पढ़े. इसके अलावा और भी
4: एक स्टोरी है द लेटर फ्रॉम अ प्रोस्टिट्यूट, लेटर फ्रॉम अ प्रोस्टिट्यूट. उसमें भी एक सेम इंसिडेंट वो कोट करती है कि एक मुस्लिम गर्ल है बतूल, शी वाज अ पठान गर्ल. तो उसके बाप को पहले जो हिंदू मॉब है वो मारता है. दे गाउजेस आउट हिज आईज, दे कट ओपन हिज एब्डोमेन एंड दे टेक आउट ऑल द एंट्रल्स एंड दे पुट इट आउट ऑन द ग्राउंड एंड देन दे रेप ऑल ऑफ द वुमेन ऑफ द हाउस वन बाय वन. सो द एक्ट ऑफ ब्रुटैलिटी that protagonist or that narrator or that prostitute, she questions everything. She says that I have read Islam and whatever they are doing is not Islam. This is Satanism. This is callousness. This is cowardice. ये वो सारी चीजें ये कहीं पर भी कोई भी religion वो नहीं सिखाता है.
3: Exactly. और उसमें जब हम मंटो की एक और कहानी पढ़ते हैं वो खोल दो, उसमें यही है कि वो मुस्लिम गर्ल होती है, उसको बचाने के लिए वो मुस्लिम लड़के जाते हैं, but they eventually they keep on raping her for so many days. और जब उसके बाप को पता चलता है consciousness. तो वो सिर्फ ये भी नहीं था कि सिर्फ हिंदूज के अगेंस्ट थे या
4: मुस्लिम्स,
3: बल्कि वो जहाँ पे उनको अपनी वो वाइल्डनेस को निकालना था, वो अपनी डेस्परेशन को एक्सरसाइज करना था, वो इन नैरेटिव्स में पनाह लेके वो भी चीज को एक्सरसाइज कर रहे थे. So this is all which happens actually in the middle of this entire novel. फिर आगे जाके हमें ये भी पता चलता है कि जो friends थे, जैसे एक मैंने जिक्र किया कि वो जो before partition वो different लोग हैं, एक मैसूर है वो मुसलमान है, आया हिंदू है, आइस कैंडी मैन भी मुसलमान है, लेकिन दोनों आइस कैंडी मैन और मैसूर जो होता है, they both of them are admirers of आया, उन दोनों को वो पसंद होती है. अब during partition फिर हमें देखने को मिलता है कि वो जो उनकी वो जो आइस कैंडी मैन लेकिन जेलस होता है उनकी क्लोजनेस से आया और मैसूर की. तो फिर आगे जाके हम देखते हैं तकरीबन पेज नंबर 175 पे कि हमें पता चलता है कि मैसूर की भी डेथ हो गई है और उसकी भी एक लाश मिलती है एक जगह से, और हालांकि वो मुस्लिम था और वो लाहौर में मारा गया, लेकिन हमें हिडन मीनिंग्स में ये पता चलता है कि वो एक्चुअली वो आइस कैंडी मैन ने उसको अपनी उस दुश्मनी के बेस पे मार दिया, हालांकि ही वाज अ मुस्लिम, ही वाज नॉट,
4: सो नथिंग गुड कैन आउट ऑफ नेगेटिव इमोशंस.
3: एग्जैक्टली. और उसमें फिर वही था कि उसको अपने पर्सनल जो ग्रजेस थे ना वो भी उन पॉलिटिकल उनके उस पे करके तो उनको पूरा कर रहे थे. उसके बाद हम आ जाते हैं तकरीबन चैप्टर नंबर 23 से चैप्टर नंबर 32 पे, हमारे पास लास्ट फेज नज़र आ जाता है विच इज़ आफ्टर पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन लाहौर, एंड देर आर ओनली मुस्लिम्स इन लाहौर नाउ, देर आर नो सिक्स, नो ब्राह्मिन्स. इसमें बुक में भी कोट होता है, मल्होत्राज हैव गॉन एंड दी सिख, यू नो सिख्स आर गॉन एंड ओनली देर आर दिस लैनी का जो घर है और उसमें जो पारसी लोग रह रहे हैं वो रह रहे हैं, और बस उनकी आया लेकिन अभी तक उनके साथ. तो इसमें ये होता है, इसके उसको फिर हम मज़ीद आगे जिक्र करेंगे और डिस्कस करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर डिस्कशन ऑन द बुक.

0: सिक्स बोरियत को भगा दो।
1: Assalamu alaikum, and then me and my friend Aisha are again back with our last phase of our discussion on this book, Ice Candy Man. जैसे हम आगे post partition वाले phase में चले जाते हैं किताब में, तो हम देखते हैं कि वो again कैसे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं. And a very important incident happens afterwards कि जहाँ पे जिस मुस्लिम मॉब मेंटालिटी has kind of aggravated और वो हर जगह जा रहे हैं और जो नॉन मुस्लिम उनको ढूंढ ढूंढ के मार मार के निकाल रहे हैं, तो they also come to Lenny's house और उनको वहाँ पे पता होता है कि यहाँ पे डिफरेंट रिलीजियस आइडेंटिटीज़ के लोग काम करते हैं, तो उन सब का पूछते हैं, तो उसमें से कोई मुसलमान हो चुका है, कोई क्रिश्चियन हो चुका है, तो वो बच जाते हैं. एंड दे आल्सो यू नो लुक फॉर द प्रूफ एज वेल. इस तरह के थोड़े इंसिडेंट्स हमें मंटो की स्टोरीज में भी मिलते हैं. बट देन दिस आइस कैंडी मैन, हिज फेस इमर्जेस आउट ऑफ दैट मॉब, और वो फिर आके जो है ना वो पूछते हैं कि वो हिंदू औरत जो तुम लोगों के घर काम करती थी वो कायम आया की बात करते हैं. तो इमाम दीन, हु इज मुस्लिम कुक हु वर्क्स इन एट द हाउस ऑफ लेनी, ही काइंड ऑफ कन्फ्रंट्स द मॉब और वो कहते हैं कि नहीं वो जा चुकी है, ही लाइज बिकॉज आया इज स्टिल वर्किंग देयर. तो वो आया को बचाने के लिए झूठ बोलता है और वो उनको कहते हैं कि नहीं वो तो जा चुकी है, अपनी फैमिली के पास चली गई है. बट आइस कैंडी मैन नोज दैट शी इज स्टिल देयर, एंड व्हाट ही डज इज जो कि वो आखिरी एक चीज़ करता है जो कि बहुत ही ब्रूटल है, वो आता है लेनी के पास और उसको बच्चे के तौर पे यू नो बहला के कोक्स करके वो पूछता है कि मुझे पता है कि आया इधर ही है, तो व्हाई डोंट यू टेल मी.
2: द फैक्ट दैट ही प्लेस विद द माइंड ऑफ दैट लिटिल चाइल्ड, वो कहता है मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम्हें
1: पता है, और कहता है आई विल प्रोटेक्ट हर विद माई ओन लाइफ, तो प्लीज टेल मी. और वो बच्ची because she also has been affiliated with him
2: and she
1: for a longer time
2: and she used to witness his affection for her,
1: affection hai unki ek intimacy hai, to wo uski wajah se wo trust kar deti hai aur wo usko bata deti hai that she is either on the roof or in the go down of the house. aur phir wo sare aur wo phir wo you know wahan se hi uska rang badal jata hai pura, wahi jo ice candy man wali humne baat ki thi.
2: It's like the ice candy man and the cook, they are like the foil characters. One
1: yes.
2: Muslim is trying to protect the Aya
1: yes.
2: and the other Muslim is running after her. He is after her life just
1: Bilkul.
2: Because she is a Hindu.
1: बिल्कुल. और आइस और बैप्टिस्ट सिद्वा ने ये भी चीज़ दिखाई कि सब मुस्लिम्स ही खराब नहीं थे, बल्कि देयर वर पीपल लाइक इमाम दीन हु वर सेविंग द पीपल ऑफ अदर रिलीजियस और प्रोटेक्टिंग द पीपल ऑफ अदर रिलीजियस आइडेंटिटीज. और फिर वहाँ पे यू नो लेनी काइंड ऑफ देन इवेंचुअली रियलाइजेस हिज मिस्टेक कि उसने जो है ना आया को शी सेज दैट आई हैव बिट्रेड आया. और फिर वो पूरा जो है वो फिर जो मॉब है वो उनके घर घुस जाता है, उनके सारे कमरे खोल खोल के देखता है, वहाँ से देन दे फाइनली रिकवर आया एंड देन दे ड्रैग हर सो ब्रूटली और वो उसको कार्ट में डाल के लेके चले जाते हैं. एंड द काइंड ऑफ देम व्हेन दे वर ड्रैगिंग हर बॉडी दे वर अगेन ट्राइंग टू इम्पोज
2: देमसेल्व्स
1: फिजिकली ऑन हर एज वेल. तो वहाँ पे वो जो उनकी एक वो सेक्सुअल बीस्टियलिटी है वो भी हमें नजर आती है दैट दे वर डूइंग. और फिर वो उसको ले जाते हैं, उसके बाद बहुत अरसा आया उनको नजर नहीं आती. एंड यू नो देर आर अदर कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट फीमेल कैरेक्टर्स इन द बुक एज वेल, गॉड मदर एंड इलेक्ट्रिक आंट और इस तरह के थोड़े यू नो डिफरेंट वियर्ड नेम्स हैं जो कि पारसी फैमिली से बिलोंग करते हैं. दे कीप ऑन लुकिंग फॉर आया, उसको रिकवर करने की पूरी कोशिश करते हैं बट नहीं मिलती. बट फाइनली शी गेट्स काइंड ऑफ उनको कहीं पता चल जाता है क्योंकि यू नो गॉड मदर की नेटवर्क बड़ी स्ट्रांग होती है. और फिर वहां से वो फिर उनको पता चलता है कि वो उसने फिर जब साथ ही आइस कैंडी मैन का भी पता चलता है कि आइस कैंडी मैन इवेंचुअली उसको ले गया था एंड ही फोर्सफुली मेड हर मुस्लिम एंड शी नेम्ड हर ही नेम्ड हर मुमताज. और फिर उस मुमताज के साथ वो निकाह भी कर लेता है लेकिन इवेंचुअली वो उसको बेच भी देता है, कोठे पे बिठा देता है. और फिर वहां पे उसके साथ जो भी अब्यूज होता है वो एक अलग कहानी है.
2: द फैक्ट दैट अ लॉट ऑफ राइटर्स हैव टॉक्ड अबाउट इट, हाउ वुमेन दे वर फोर्स्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन
1: एज अ
2: partition they were abducted, they were raped, they were violated and they were sold in the bazaars.
1: Yes and that too happened because wo hum zikr bhi karte hain ek act ka jo ke baad mein aaya tha, Pakistani jo bhi territory thi wahan pe Hindu khawateen ko aur Sikh khawateen ko
2: they were exchanging their prisoners or the people,
1: lekin pehle unko you know agwa kiya gaya, unko mara gaya, theek hai. On the other hand wahan pe you know Hindu territory mein aur Indian territory mein Muslim khawateen ke sath is tarah hua. But after partition there came an act, government ne kaha ki jab apni jo hai na hum unko khawateen ko jo hai wapas bheje ya prisoners ko wapas bheje, to phir wahan se yahan pe jo muslim khawateen wapas aayi unko unki families ne accept nahi kiya
2: because they
1: so that was an you know another tragedy after tragedy. Unki apni families ne unko own nahi kiya, wapas nahi liya. Aur phir then these women were called fallen women and then eventually they had to go into prisons, either prisons or either in, you know, jaise aapke paas darul aman ya is tarah ki kuch jagah the, ya phir wo prostitution mein chali gayi.
2: So they were like doubly displaced,
1: double, triple, I don't know, doubly marginalized, or jitni bhi hum is pe kar sake, layers hain bahut zyada unki oppression ki. To wo sab unhone face ki aur end, at the end phir hame aaya ka pata chalta hai ki wo mil jati hai aur jo ice candy man ko uski body to mil jati hai, usko, you know, usse shaadi bhi kar leta hai aur phir usko phir wo use bhi karta hai, usko kote pe bitha deta hai, but wo he never gets to earn her respect from her, वो ownership, वो love, affection, intimacy उसको कभी भी नहीं मिलती. और वो उसके प्यार में apparently होता है, but this is not love actually, but वो उसको प्यार का नाम देता है, वो शायर बन जाता है उसके पीछे. और फिर eventually आया को गॉड मदर रिकवर करवा के उसकी फैमिली के पास वापिस अमृतसर भेज देती हैं. और जो है वो आइस कैंडी मैन उसके पीछे बॉर्डर में ही कहीं लॉस्ट हो जाता है. आई वुड लाइक टू कोट द वेरी एंडिंग ऑफ दिस नॉवल नाउ दैट I am told at last Aya has gone to her family in Amritsar and Ice Candy Man too disappears across the Wagha border into India. So that was all about today's novel jisme humne bahut sare I think perspectives ko discuss kiya, but hamara zyada focus
2: time nahi tha to hum usme details mein nahi ja sake because the novel is laden with so many layers, so many things that we can talk about. You can talk about Lahore,
1: so many incidents,
2: yeah, so many things, so many themes, chahe loss of innocence ho, betrayal ho, brutality ho, ya phir partition ke time ka trauma ho, aap feminist perspective se dekhen, post colonialism se dekhen, Foucault ki theory ke through dekhen, there are different lenses.
1: तो बट दिस बुक इज़ वेरी गुड टू रीड. और अगेन एक हमारी रिकमेंडेशन भी इसको पढ़ें, बैप्टिस्ट द पास्ट अवे लास्ट ईयर, तो बट हर वर्क विल ऑलवेज रिमेन अ वेरी वुड ऑलवेज रिमेन यू नो प्ले अ वेरी पिवटल रोल व्हेन इट कम्स टू रीडिंग पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस. अल्लाह हाफिज़.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है UCP की दुनिया। आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 0423111877 पर राब्ता कीजिए।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है, इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है। लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हर गिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के ताबून से पेश किया जा रहा है।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: खेल ले।
1: मैं इसके बाद बैटिंग पे जाऊंगा। अब बाल पकड़ो।
0: बाइक चलाना सिखाऊंगा।
1: बाकी?
0: हाँ।
2: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
1: खबरदार, छूना मना है।
3: वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6 UCP ki duniya.
1: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत. आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया UCB की दुनिया
1: ये आवाज है।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

www.lucifer.edu.uk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौर ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
0: एक नई लगन।
1: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
1: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
1: UCP की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Fun, entertainment, news, knowledge, 24/7, only on UCP FM 92.6, UCP की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।